भय चूर गए, तन में चीत गवार, तन विरली सच संचया, निर्मल नाम प्यार, तन गया ता जान देहे, जे राचे रंग एक, मन दीजे सिर सौंपिए, पी करते की टेक, तंदा तात रह गए, मन में शब्द आनंद, दुर्जन ते साजन पए, टेटे गुर गोविंद, बन बन फिरती टूंढती, वस्त्र ही कारबार, सदगुर मेली मिल रही, जन्म मरण दुख निवार, ना ना करतना छूटिए, विण गुण जम पुर जाहे, ना तिस एहो ना ओ है, अगुण फिर पछताहे, ना तिस ज्ञान ना ध्यान है, ना तिस कर्म ध्यान, विण नावे निरपो कहा।

बैराए बीर चले कर अपने बहन बरेजल जाए बाबल कहे कर बेटड़ी बाली बाले नेहे जे लोड़े वर कामणी सगुर सेवै तेहे बिरलो ज्ञानी बूझणो सतगुर साज मिले ठाकुर हाथ वडाइया जय पावे तय दे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए ए बाणी महापुरख की निकरवासा होए पन पन कड़िए कड़ कड़ पजे हाय उसारे उसरे टाहे सर पर सुख पी पर पुख समर्थ वे प्रवाह परम पुलाने पए देवाने विण भागा क्या पाईए गुरमुख ज्ञान डोरी प्रा पकड़ी जिन खिंचे तिन जाइए हर गुण गाए सदा रंग राते बौड़ना पछो ताइए पब्बे भाले गुरमुख बूझे कनज करवासा पाईए पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा आस निराशा तरीए गुरप्रसादी या पोचीने जीवत्या इव मरिए माया माया कर्म होए माया किसे ना साथ हंस चले उड़ डुमणो माया पूली आथ मन झूठा जमझोया अवगुण चले नाल मन में मन उल्टो मरे जे गुण होवे नाल मेरी मेरी कर्म होए विण नावे दुख पाल गढ़ मंदिर महिला कहा जो बाजी दीबान नांग सच्चे नाम वेण झूठा आमन जान आपे चतर स्वरूप है आपे जान सुजान तू आवे से जाए फोन आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी हटे ना वधे उताहे से जन उबरे जिन हर पाया धंधा मुआ विगोती माया जो दिसे सो चालसी इसको उम्मीद करेओ जियो समपो अपना तन मन आगे देओ अस्थिर करता तू तनी तेसी की मैं ओट गुण की मारी होमोई सब धरती मन चोट राणा राव ना कोर है रंगना तुंग फकीर।

यार तिनकी जैसी थी रहा जप जप रे मुरार। अगुणी भरपूर है गुण पी वस्ते नाल विण सगुर गुण ना जापनी जिते शब्द ना करे विचार। लस्करियां कर संभले आए वजो लिखाए तार कमावे सिर धनी लाहा पल्ले पाए। लाभ लो बुरियाईया छोड़े मनो विसार गड़दोई पासा की कदे न आवे हार। चाकर कहिए खसम का सोए उत्तर दे वजो गुआए अपना तख्त न बैसे से। प्रीतम हथ वडियाईया जय पावे तय दे आप करे किसे आखिए आवर ना कोए करे। बीजो सूजे को नहीं बहे दुलीचा पाए नरक निवारण नरे नर साचो साते नाए। वन त्रिन टूणत फिर रही मन में करो विचार ला रतन बहुमान की प्रगुर हाल पंडार। ऊत महुमा प्र मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लहा लय प्रथाए। रचना राज जिन रची जिन श्रेया आकार गुरमुख बेअंत ते आई गए अंत न पारा वार। अड़ाड़े रूड़ा हर जीव सोई ते बिन राजा अवर न कोई। अड़ाड़े गारड़ तुम सुनो हर वसे मन माहे गुर प्रसाद दी घर पाई गए मत को परम कोलाहे। सो सौ साचा जिस हर तनरास गुरम पूरा तेस सबास। रूड़ी बाणी घर पाया गुर सब्दी विचार आप गया दो कटिया हर वर पाया नार। सोई ना रूपा संची है तान काचा विगशार सौ सदाए संज तान दुबदा होए कुवार। सत्यारी सच संचया ताचो नाम अमोल हर निर्मायल उजलो पस साची सच बोल। साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकुर मानवस हो बलिहारी तिस। माया ममता मोहनी जिन कीती सुजान दिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान। खिमा बिहूने खब गए खून लख असंख गणतन आवे क्यों गणी खाप खाप मोए बसंख। कदम पछाने अपना फूले बंद न पाए तद मैली खरा तू खिमा सच सुख पाए। खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जापे सदा गुण अंतर मन तीर। होमे खपे खपाए सी बीजो वस विकार जंत उपाय विच पायन करता अलग अपार। सृष्टे प्यो न जाने कोय सृष्टा करे सुने चो होय। संपे को ईश्वर त्याई है संपे पुरब लिखे की पाई है। संपे कारण चाकर चोर संपे साधन चाले होर बिन साचे नी दर गए मान। हर पीवे छुट्टे निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान। हो करती मैं मोई सद रवे मन ज्ञान हार डोर कंकन कणे तरथा की सीगार। मिल प्रीतम सुख पाया सगल गुणा गल हार नानक गुरमुख पाई गए हर सो प्रीत प्यार। हर बेन किन सुख पाया देखो मन विचार हर पढ़ना हर बुझना हर सो रखो प्यार। हर जपी हर त्याई है हर का नाम आधार लेख न मिटी हे सखी जो लिखिया करतार। आपे कारण जिन किया कर कृपा पगतार करते खत वडियाईया बूझो गुर विचार। लिखिया फेर न सकीए ज्यो भावी त्यो सार नदर तरी सुख पाया नानक शब्द विचार। मनमुख फूले पचमुए उबरे गुर विचार जे पुरख नदर न आवई तिसका क्या कर कहे आ जाए। बलिहारी गुर अपने जिन हिरदे दिता दिखाए पांदा पढ़िया आखिए विद्या विचरे सहे सुपाए। विद्या सो देता तलह राम नाम लिव लाए मनमुख विद्या बिकरदा बिख खट्टे बिख खाए। मूर शब्द ना चीनई सूझ बूझ न काए पांदा गुरमुख आखिए चाटड़िया मत दे। नाम संभालो नाम संग्रहो ला जग में ले सची पट्टी सच मन पढ़ गए शब्द सोसार। नांग सो पढ़िया सो पंडित बीना जिस राम नाम गल हार। राम कली महला पहला सिद्ध गोष्ट एक ओ अंकार। सदगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो इस आगे रहे रास हमारी साचा अपर अपारो। मस्तक कार तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाइए सहज पाए जस लेओ। क्या पविए सच सूचा होए साध सब मुक्त न कोई रखाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुवाओ। साज को अरदास हमारी हाँ संत जना बल जाओ। कहे बैसो कह रही ये बाले कहे आवो कहे जाहो नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहो। कड़ कड़ बैस निरंतर रही है
ਚਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ, ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਆ ਪਛਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ, ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰੋ, ਚਿਰਪੜ ਬੋਲੇ ਔਧੂ ਨਾਨਕ, ਦਿਓ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ, ਆਪੇ ਆਖੇ ਆਪੇ ਸਮਝੇ।

मन जा गोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफुन रहा समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख साज समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो मैं।

कचियल सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कचियल घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाई अले क्यों निरभो कर जाइए सह संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइए गुर के शब्द हमें बिख मार ता निरकर हो वे वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे समाई एस शब्द को जो अर्थ

हुक्मे रहे सुमाई पूरे गुरते साज कमावे गात मित सब दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले धड़कड़ साचा सर्ब जिया गुर बचनी अवगत समाइये तत निरंजन सहज लहे नानक दूजी कारना करनी सेवे सिख सो खोज लहे हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुत सा जाने सोई आप मेट निरालम होवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुणते सर्ग

तू सच्ची नाई। श्लोक कबीर कसौटी राम की, झूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सह, जो मर्जी वा होए मोहल्ला तीजा। क्यों कर यो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कया शब्द न मानई, होमे छड़े न कोए, गुर प्रसादी होमे छुट्टे, जीवन मुक्त सो होए, नानक जिसनु बख्शे तिस मिले, तिस बिघन ना लागे कोए मोहल्ला तीजा। जीवत मरना सबको कहे, जीवन मुक्त क्यों होए, पय का संजम जे करे, दारू पाओ लाए, अनदिन गुण गावे सुख सहजे, बिग पवजल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए, जा को नदर करे पौड़ी, दूजा पावर चायोन, त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन, हुक्म कवावन कारा, पंडित पढ़ दे जोत की, ना बूझे बिचारा, सब कुछ तेरा खेल है, सच सृजनहारा, जिस पावे तिस बख्श लहे, सच शब्द समाई।

परमे पूला सब तीर्थ गह, ओ तपा कैसे परम गत लह, गुर प्रसादी को सच कमावे, नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा, सो तपा ये ओ तप का ले, सदगुर नु मिले शब्द समाले, सदगुर की सेवा यो तप प्रवान, नानक सो तपा दर्घ पावे मान पौड़ी, रात दिन उपायन संसार की वर्तन, गुरमती कर चानना आनेर बिनासन, हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण, सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान, सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई, वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम, ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म, आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए, इसका भोजन नानका विरला पाए कोए। महला तीजा, अभ्यागत ए न आखियन जे पर कर भोजन करेन, उदरे कारण अपने बैले पेख करेन, अभ्यागत से ही नानका जी आत्म गौन करेन, पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन, पौड़ी अंबर तरतब छोड़ेन, वे सच्चा असराओ कर दर सबो सच है, जिस विच सच्चा नाओ तब सच्चा हुक्म वर्तदा, गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा, बै सच्चा करे न्याओ तब सचो सच वर्तदा, गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, रैनायर माय अनंत है कूड़ी आवे जाए, भाणे चले अपने बहुती लय सजाए, राय नायर में सब किश है कर्मी पल्ले पाए, नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए। महला तीजा, है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश, रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास, बिख खादी मनमुख मोआ माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिग वास, जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास, ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास, जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यों विच्चे गिरे उदास, जन नान करे कराया सबको क्यों पावे तिब हर गुण तास, पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी, आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी, सिमरत सास्त साजियन पाप पुन ग्रंथ गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी, तबे आपे आप वर्तदा आपे बक्स मिलाई, वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला तीजा, यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए, जो सह रत अपने इन तन लोभ रत न होए, पय पय तन खीन होए लोभ रत विचो जाए, ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत मैल गवाए, नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए। महला तीजा, राम कली रामन वसया ता बनया सीगार, गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत पंडार, परम गया ता जाग गया चूका अज्ञान अंधार, तेसनु रूप अत अगला जिस वर नाल प्यार, सदा रवे तेरे अपना तोबावंती नार, मनमुख सीगार ना जाननी
जसन जन्म सवहार बिन घर भगती सीगार करे नित जम्मे होए खुआर सहे सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो जगह संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सदगुर सेवे सांत न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए तिन जम्मण मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब तावे आप निचल अचल है होर आवै जावै सदा सदा हर त्याई है गुरमुख सुख पावै निकरवासा पाई है सच सिफत सुमाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम त्याए तू सबो वरते सच नानक हुक्मे जो बुझे तो बल पाए सच कथनी बदनी करता फिरे हुक्म ना बूझे सच नानक हर का पाणा मन्ने तो भगत होए विण मन्ने कच्चन कच महला तीजा मनमुख बोल ना जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार ओए थाओ कथाओ ना जाननी उन अंतर लो विकार ओए अपने स्वाए आए भय गल्ला करे ओ ना मारे जम जिंदार अगे दरगे लेखे मंगे मार खुआर कीचे कूड़ियार ए कूड़े की मल क्यों उतरे कोई कड्डो यो विचार सतगुर मिले त नाम दड़ाए सब केलख कटन हार नाम जपे नाम आराध ते जन को करो सब नमस्कार मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम हुआ सच्यार जन नानक जिस दे ए चलत है सो जीवो दे मनहार पौड़ी तुद जे वड़दाता नाहे किस आग सुनाई है गुर प्रसादी पाए जिथो होम में जाइए रस का सादा बार सच्ची वडे आईए जिसनु बख्शे तिस दे आप लय मिलाइए तट अंतर अमृत रख्यों गुरम किसे पे आई वाहो वो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां उत सुपुत करेन जे सतगुर पावे सो मन लैन से ही कर्म करेन जाए पुछो सिमरत शास्त्र प्यास सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच समालेन नानकाए से प्रवाण पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा गुरु जिना का अंगला सिख पी अंधे कर्म करेन ओए पाणे चलन अपने निर झूठो झूठ बोलेन कूड़ कु सत कुमांदे पर निंदा सदा करेन ओए आ डुबे पर निंदगा सगले कुल डोबेन नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखद जेती सिट सब कीती एक कूड़ कु सत लायन मनमुख विभूति गुरमुख सदा त्याई है अंदर घर प्रीति जिन को पोते पुन है तिन वात से पीति नानक नाम त्याई है सच सिफत सुनाई
वाहो वह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरख खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेद न माने कोय आपो आपे पूजा होए। काजी होए के भय न्याय फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लै के हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कान रे सुमावे लोक मुहावे चाड़ी खावे। चौका दे के सुच्चा होए ऐसा हिंदू वेखो कोए। जोगी गिरही जटा बेपूत आगे पाछे रोवे पूत। जोग न पाया जूत गवाई कित कारण सिरशाई पाई। नानक कलका यो परवान आपे आखणे आपे जान। महला पहला हिंदू कै कर हिंदू आवे सूज नेऊ पड़गल पावे। सूद पाए करे बुरियाई नाता तोता थाए न पाई। विण गुर पीरे ओ थाए न पाई। राउद साए उथे को जाए करणी बाजों पिस्त न पाए। योगी कै घर जुगत दसाई तित कारण कन मुंदरा पाई। मुंदरा पाए फिरे संसार जिथे किथे सिरजनहार। जेते जी तेते वाटाऊ चीरी आई तिल न काऊ। इथे जाने सो जाए सियाने होर फकड़ हिंदू मुसलमान। सबना कादर लेखा होए करणी बाजो तरे न कोए। सचो सच वखाने कोए नानक अगे पुछ न होए पौड़ी। हर का मंदर आखिए काया कोड़ गाड़। अंदर लाल जवेहरी गुरमुखर नाम पढ़। हर का मंदर शरीर अत सोना हर घर नाम दिड़। मनमुख आप खुवायन माया मोह नित कड़। सबना साहेब एक है पूरे भाग पाया जाई। वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला पहला ना सदुखिया ना ससुखिया ना सत पानी जंत फिरे। ना सत मूड मुडाई केसी ना सत पढ़िया देश फिरे। ना सत रुखी बिरखी पत्थर आपत शावे दुख सह। ना सहस्ती बद्दे संगल ना सत गाई काओ चरे। जिस हस सिद्ध देवे जे सोई जिसनु देत आए मिले। नानक ता को मिले वडाई जिस कड़ पीतर शब्द रवे। सब कड़ मेरे हो सब न अंदर जिसे खोवाई तिस कौन कहे। जिसे दिखाला बाटड़ी तिसे पुलावे कौन। जिसे पुलाई पंध सिर तिसे दिखावे कौन। महला पहला थो गिरही जो निग्रह करे जब तब संजम पीखिया करे। पुन दान का करे शरीर सो गिरही गंगा का नीर। बोले ईश्वर सत स्वरूप परम तंत मैं रेखना रूप। महला पहला

तनसो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए, तनसो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाओ, जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारे जाओ, तिन की तूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए, जो रत्ते रंग गोविंद के हों तिन बलिहारे जाओ, आखा बिरथा जी की हर सज्जन मिल हो राय, गुरपूरे मेलाया जन्म मरण दुख जाए।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से ती निहो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, सब सुहागण माणे रलियां, एक देवो रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराधमान, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया

करे सुद देख, नानक जिस तुरमस्तक हो वही लिखया तिस सतगुर नाल सुनेहा। अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस किरपाल होवे तिस हृदय वसेहा। आमन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी। जो तु पाणा जंत सो तुद बुझई, जो तु पाणा जंत तो दरगे सिजई। जिसनु तेरी नदर होमे तिस गई, जिसनु तु संतुष्ट काल माल तिस खई। जिसके स्वामी वल निरपौ सो पई, जिसनु तु किरपाल सच्चा सो थई। जिसनु तेरी माया ना पोहे अगनई, तिसनु सदा दयाल जिन गुरते मत लई। सलोक महला पंजवां, कर किरपा किरपाल आपे बख्स लए। सदा सदा जपी तेरा नाम सतगुर पाए पै। मन तन अंतर वस दुखा नास होए, हथ दे आप रख व्यापे पौ ना कोय। गुण गावां दिन रहन एते कम लाए, संत जना के संग होमे रोग जाए। सर्ब निरंतर खसम एको राव रहया, गुर प्रसादी सच सचो सच लहया। दया करो दयाल अपनी सिफत देहो, दर्शन देख निहाल नानक प्रीत एह। महला पंजवां, एको जपिए मने माहे, एक सकी सरणाए। एक स्यों कर पिरहड़ी दूजी नाहीं जाए। एको दाता मंगिए सब कुछ पल्ले पाए, मन तन सास गिरास प्रभ इको एक त्याए। अमृत नाम निधान सच गुरमुख पाया जाए, वड़भागी ते संत।

गुणगाओ, मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुणगाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ, जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए, नानक नाम जपत सुख उपजे।

पौड़ी। वड्याई सच्चे नाम की हो जीवा सुन सुने, पशु प्रेत अज्ञान उधारे एक खने। दिन सरैन तेरा नाव तदासा जापिए, तृष्णा भुख विकराल नाए तेरे त्रापिए। रोग सोग दुख वंजे जिस नाउ मन बसे, तिसे प्राप्त लाल जो गुर शब्दी रसै।

फेर फिराहर सदगुर संग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवां आहार सब करदा फिरे आहार एक ना होए नानक जित आहार जग उधर है विरला बूझे कोए पौड़ी वड्डियों वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक।

जब तब संजम गुरमुख भोगी रहाओ। बुद्ध बिपूत चढ़ावो अपनी, सिंगी सुरत मिलाई, कर बैराग फिरो तन नगरी।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवा गवन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मो माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्माल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ ना पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पार सह न परसे, देव संसे गांठ न छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रघा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे नानासी, कौरव दास सबे नी समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहां नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहां नरंजन रमैया होए रघाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर धाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री बस

स्वामी तुम धुट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

साधु तूर करो नित मजन सब केलबिख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दिष्ट सुमायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुलना लायन दुह कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवां मेरे सर्बस नाम निधान।

सतगुर ज्ञान मजन गए नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस न परस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

बचन न पाए सा फोट चार सीगारे। मटक मटक चल सखी सहेली मेरे ठाकुर के गुण सारे। गुरमुख सेवा मेरे प्रापाई मैं सदगुर अलख लखारे। नारी पुरख पुरख सब नारी ताबेको पुरख मुरारे। संत जिना की रेन मन पाई मिल हर जन घर निस्तारे। ग्राम ग्राम नगर सा फिरया फिर अंतर घर जन पारे। सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे। पावन सूत सब नीका करया सदगुर शब्द विचारे। निज कर जाए अमृत हस पिया बिन नैना जगत निहारे। तौ गुण ईस बन नहीं सको तो मंदिर हम निक कीरे। नानक कृपा करो गुरु मिलो मैं राम जपत मन तीरे। नट मगला चौथा मेरे मान भाज ठाकुर अगम अपारे। हम पापी बो निर्गुणी आरे कर कृपा गुर निस्तारे। रघाओ साधु पुरख साध जन पाए एक बिनो करो गुर प्यारे। राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन एक इंद्री पकर संघारे। पंच पूत सब लगै देही गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे मुन नारद बचन पुकारे। राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी जिव सूरज कमल निहारे। मेर सुमेर मोर बो नाचे जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो सब डाल फूल विस्कारे। ज्यों ज्यों निवे सागत नर सेती छेड़ छेड़ कड्डे बिखकारे। संतन संत साध मिल रही है गुण बोले परे पुकारे। संत संत मिले मन बिसे जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है हलक्यो सबे बिगारे। मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई गुर ज्ञान खड़ग ले मारे। राख राख राख प्रा मेरे मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तर अवर न काई मैं सतगुर गुर निस्तारे। छक्का एक

रे मन टहल हर सुखसार, अवर टहलना झूठिया निर करे जम सिर मार रखाओ, जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार, नित चरण सेवो साधके तज लोभ मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार, एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार, तुर होवना सो होया को ना मेटन हार, अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन घर नामा उरतार, माली गौड़ा महला पंजवा राम नाम को नमस्कार, जा जबत होवत उधार, रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद, जाके सिमरन छूटे बंद, जाके सिमरन मूर्ख चतर, जाके सिमरन कुल उधर, जाके सिमरन पौ दुख हरे, जाके सिमरन अबदा टरे, जाके सिमरन मुजद पाप, जाके सिमरन नहीं संताप, जाके सिमरन हृदय विगास, जाके सिमरन कवला दास, जाके सिमरन निध निदान, जाके सिमरन तरे निदान, पतत पावन नाम हरी ओड भगत उधार करी, हर दास दासा दीन सरन नानक माथा संत चरण, माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पर पूर्ण काम रखाओ, बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीवक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत।

जैसे पालन सरन सेंघ गरण मुख नि सर्प त्रास तूआ पिंजर नहीं खाए बिलास जैसो अंडो हिरदे माहे जैसो दानो चक्की दराहे बहुत उम्मा थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूच चोबो अपार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा यही हमारे सबर काज अपने दास को लियो निवाज रहाओ चरण संत मास मोर नयन दर्श पेखो निसपोर हस्त हमरे संत टहल प्राण मन तन संत बहेल संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आज्ञा महे मीठ मेरा कमल बिगसे संत डीठ संत संग मेरा हुए निवास संतन की मोए बोध प्यास संत बचन मेरे मने मंत संत प्रसाद मेरे बिखे हंत मुक्त जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक को प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर अरहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिनसे सुखियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जाके कर सगले समागे जिते बिरता कोई नागे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेव हो किरपाल सदा धर्म जाके दीबान बे मोहताज नहीं किश कान सब कुछ करना अपने आप रे मन मेरे तू ताको जाप सा संत कहो बलिहार जस मिल होवे उधार नाम संग मन तन

सदगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना, जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाइये, जीवने का मूल रब रया सरबत ठाई।

सोए, पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोए, करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ, बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ, माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन तन ओ राम बेन बाजे, मदर मदर तुन अनहत गाजे, रहाओ तन तन मेघा रोमावली, तन तन कृष्ण ओढ़े कामली।

सहज सुख होई, कर छड़ने रहे न कोई, किस खाजे किस तर जाइए, जे बहुत दुनिया आइए, सदकाया पट हंडाए, फुरमाइश बहुत चलाए, कर से सुखाली सोवे, हथी पौंदी काहे रोवे, कर कुमन वाणी पाई, पा पत्थर तरन न जाई, बहु बेड़ा जी ओ चढ़ाऊ, कहो नानक देवे काहू, मारू मोहल्ला पहला कर पहला, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पाए, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, तौ गुण नाहीं अंत हरे।

खाए ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जब तरह तेरा नाओ, लून खरामी नानक लाला, बगसे तुद वडियाई, आद जुगाद दया पददाता, तुद विन मुक्त न पाई, मारू मोहल्ला पहला, कोई आखे भूतना ओ कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा, पया देवाना साका नानक बौराना, हों हर बिन अवर न जाना रखाओ, तौ देवाना जानिए या पै देवाना होए, एक ही साहेब बारा दूजा अवर न जाने कोए, तौ देवाना जानिए या एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए, तौ देवाना जानिए या साहेब तरे प्यार, मंदा जाने आप को अवर पला संसार, मारू मोहल्ला पहला, इहो तन सरब रहे।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहाओ बुरा पला किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरते यो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लेवे लागी दुबदा तदे बेनासी जुत पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना तास तास धर्म राय जपत है

एक सच्चा सब सेम दी तुर भाग मिला भाग होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवरतदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनुरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जेवड़ अवर ना

परे उधरे जन नानक हर कृपा धारी उर तरे ओ नाम हरे मारू महला चौथा सिद्ध समाध प्यो लिवलाई साधक मुन जपया जति सती संतोखी ताया मुख इंदराध करव्या शरण परे जप्यो ते पाए गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जपत तरिया तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रघाओ सुर नार गण गंधर्वे जप्यो रिख बपरे हर गाया शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर घर नाम जपया हर घर नाम जिन्ना मन पीना ते गुरमुख पार पया कोट कोट तेतीस ते आयो हर जपत्या अंत न पाया वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडित हर गाया नाम रसाल जिन्ना मन वसया ते गुरमुख पार पया अंत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणतना कर सकया गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर ब्राह्मण पाया उरतार कृपा हर नाम दरड़ायो जन नानक नाम लया मारू महला चौथा कर तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर हर नाम निधान लय गुरमत हर पद पाए हलत पलत नाल चलदा हर अंते लय छाए जिथे आप कट गलियां पीड़ियां तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सदगुरा मैं हर हर नाम दिरड़ाए मेरा माल पिता सुदबंध को मैं हर बिन अवर नाम आए रहाओ मैं हर बिरगी हर नाम है कोई आन मिला वे माए इस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सगुर पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए जिन हर हर नाम न चेते हो से पागहीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जमे आवे जाए ओए जमदर बदे मारी है हर दरगे मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मुको मेले हो हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सदगुर की शरणाए हर जीव आप दयाल होए जन नानक हर मेल आए मारू महला चौथा हौ पूंजी नाम दसाए दा ओ दसे हर तन रास हौ तिमिटों खन खनिए।

प्रेनाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सावास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन निरजास हर गुर विच आप रखिया हर मिले गुर सावास सागर भगत भंडार हर पूरे सतगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर परगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दातार है हो मांगो दान गुर पास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमत घर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईगे अकथ कहानी संत जिना मिल पाया तुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रभ तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुरु मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत श्रद्धा उपजे गुर सबदी हर चार।

असाध रोग उपजो तन पीतर तरतन काहू टारियो प्रा विसत मां दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रखाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए हो साचा सोए सुख पाया फिर।

माया माध मन तन संग जाता तृष्ण ना बूझे करत कलोला ऊनी आस मिथ्या सा बोला आपत अकेला जात अकेला हम तुम संग झूठे सा बोला पाए ठगौरी आप भुलायो नानक कीर्तन जाए मिटायो पस पंखी भूत अर प्रेता बहुबत जोनी फिरत अनेता जय जानू तय रहन न पावे थान बिहून उठ उठ फिर तावे मन तन बासना बहुत विस्तारा अहंग मेव मूठो बेचारा अनक दोह अर बहुत सजाई ताकि कीमत कहन न जाई।

दीनानाथ जगत पित माया प्रभ दयाल दुख दर्द बिदारण जिस पावे तिस घी निस्तारण अंध कूब ते काढ़न हारा प्रेम भगत होवत निस्तारा साध रूप अपना तन धारिया महा अगन ते आप उबारिया जब तब संजम इसते किश नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम देहे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवां।

गुरपूरे सावास है, काटे मन पीरा लाला गोला तनी को क्या कहो बड़े आई है, भाणे बक्से पूरा तनी सच कार कमाइए, विछड़िया को मेल लय गुर को बल जाइए, लाले गोले मत खरी गुर की मत निकी, ताती सुरत सुहावनी मानमुख मत फीकी, मन तन तेरा तू प्रभु सज तीरक तुरकी, सचे बैसन उठना सच भोजन भाख्या, चित सचे वितो सचा साचा रह चाख्या, साचे घर साचे रखे गुर बचन सुपाख्या, मनमुख आलस घणो फाथे उजाड़ी, फाथा चुगे न चोगड़ी लग बंद बिगाड़ी, गुर प्रसादी मुक्त होए साचे ने ताड़ी, अनहत लाला बिदया प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया

क्या जम्मण मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना। तू दयाल दया कर दिख है, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निरकर बैस रहे पोखाया, ताप्त राखे ठाक रखाया। कामल विगास हरे सर सुभर, आत्मराम सखाई है। मरण लखाए मंडल में आए, क्यों रहिए चलना परसाए। सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिले वडाई है। आप उपाया जगत सुबाया, जिन सिरिया तिन तंदे लाया। सच्चे ऊपर अवर न दिस, साचे कीमत पाई है। ऐथे गोलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा धुंदू कारे। बारी खेल गए बारी गर, ज्यों

ब्रह्मा विष्णु महेश न कोई, अवर नदी से एको सोई। नार पुरख नहीं जात न जन्मा, ना को दुख सुख पाए दा, ना तद जति सती बनवासी, ना तद सिद्ध साधक सुखवासी। जोगी जंग पेख न कोई, ना को नाथ कहाए दा, जब तब संजम ना ब्रद पूजा, ना को आख वखाणे दूजा। आपे आप्यो पाए विकसै, आपे कीमत पाए दा, ना सोच संजम तुलसी माला, गोपी कान ना गऊ ग्वाला। तंत मंत पाखंड ना कोई, ना को वंश वजाए दा, कर्म तर्म नहीं माया माखी, जा जन्म नहीं दिसे आखी। ममता जाल काल नहीं मत है, ना कुक से त्याए दा, निंद बिंद नहीं जियो ना जिंदो, ना ता गोरख नामा शिंदो। ना ता ज्ञान त्यान कुल ओपत, ना को गणत गणाए दा, वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री, देवना देवरा गौ गैत्री। होम जग नहीं तीर्थ नावण, ना को पूजा लाए दा, ना को मुल्ला ना को काजी, ना को शेख मसायक हाजी। अरे ये तराओ ना हो में दुनिया, ना को कैण कहाए दा, पावना पगती ना सिव सकती, साजन मीत बिंद नहीं रखती। आपे सावा पे वनजारा, साचे एहो पाए दा, वेद कतेब न सिमरत शास्त, पाड़ पुराण उदे नहीं आस्त। है ता भगता या पे गोचर, आपे अलख लखाए दा, जत पाणा ता जगत उबाया, बाज कला आडान रखाया। ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए, माया मोह वधाए दा, विरले कौ गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुकम सुभाया। खंड ब्रह्मांड पाताल आरंभे, गोतो प्रगटी आए दा, ताका अंत न जाने कोई, पूरे गुरते सोजी होई। नानक साजरते विस्मादी, विस्म पय गुण गाए दा, मारू महला पहला। आपे आप पाए निराला, साचा थान की उदयाला। पौण पानी अग्नि का बंधन, काया कोट रचाए दा, नाव करता पेथा पणहार है, दसवें वासा अलख अपार। सायर सत पले जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाए दा, रस दीपक ज्योत सुबाई, आपे कर वेखे वडियाई। ज्योत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे सोभा पाए दा, गढ़ में हाड़ पटनवा पारा, पूरे तोल तोले वणजारा। आपे रतन साहे लेवे।

आपे बख्श लाए सुख पाए, पूरे शब्द मिलाई है। दुर्म झूठी बुरी बुरियार, औगुणयारी औगुणयार, कच्ची मत फीका मुख बोले, दुर्मत नाम न पाई है। औगुणयारी कंत न पावे, मन की झूठी झूठ कमावे, फिर का साओ न जाने मूर्ख, बिन गुर बूझ न पाई है। दुर्मत खोटी खोट कमावे, सीगार करे फिर खसम न पावे, गुणवंती सदा पिर रावे, सदगुर मेल मिलाई है। आपे हुम करे सा विख है, एक ना बख्श लय तुर लिख, अन दिन नाम रते सद पाया, आपे मेल मिलाई है। होमे तात मोहरस लाई, गुरमुख लिव साची सह सुमाई, आपे मिल है आपे कर विख है, बिन सदगुर बूझ न पाई है। एक शब्द विचार सदा जन जागे, एक माया मोहे सोए रहे अपागे, आपे करे कराए आपे, होर करना किशु न जाई है। काल मार गुर शब्द निवारे, हर का नाम रखे उरतारे, सदगुर सेवा ते सुख पाया, हर के नाम समाई है। दूजे पाए फिरे देवानी, माया मोहे दुख माए समानी, बहुते पेख करे नहीं पाए, बिन सदगुरु सुख ना पाई है।

मैं कहन न जाई, अंत न पारा कीमत नहीं पाई, आपे दया करे सुखदाता, गुण में गुणी समाया, ए जग में मोह है पासारा, मानव अज्ञानी अंध अंधारा, तंदे तावत जन्म गवाया, बिन नावे दुख पाया, कर्म होवे ता सतगुर पाए, होमे मैल शब्द जलाए, मान निर्मल क्या रतन चानन, अज्ञान अंधेर गवाया, तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई, सच नाम हर हिरदे वसाई, कीमत कौन करे प्रातेरी, तू आपे सहज सुमा

तोलाया। सेवक सेवह करे अरदास, तू आपे मेर बहाले पास। सबना जिया का सुखदाता, पूरे कर्म ते आया। जात सा संजम जे सच कमावे, यो मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे, हर जीव मेरे पाया। जिसनु बुझाए सोई बूझे, हर गुण गावे अंदर सूझे। होमे मेरा ठाकर खाए, सहजे ही सद पाया। बिन कर्मा होर फिरे कनेरी, मर मर जम्मे चुके ना फेरी। बिख का राता बिख कमावे, सुख न कबहू पाया। बहुते पेख करे पेख तारी, बिन सबदे होमे कने ना मारी। जीवत मरे ता मुक्त पाए, सच्चे नाए समाया। अज्ञान तृष्णा इस तने जलाए, तेदी बूझे जे गुर शब्द कमाए। तन मन शीतल क्रोध निवारे, होमे मार समाया। सच्चा साहेब सच्ची वडियाई, गुर प्रसादी विरले पाई। नानक एक कहे बेनंती, नामे नाम समाया। मारू महला तीजा, नदरी भगतां लहो मिलाए। भगत सलाहन सदा लिवलाए, तौ सरनाई उभरे करते। आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई। अंत सुख तेरे मन पाई, मंत्र सच्ची भगती राता। सच्चे स्यो चित लाया, होमे विच सजले शरीरा। कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर ज्ञान शब्द बुझाए। सदगुर ते सुख पाया, मनमुख अंधा अंध कमाए। बहु संकट जोनी परमाए, जम का जेवड़ा कदे ना कटे। अंते बहु दुख पाया, आमन जाना शब्द निवारे। सच नाम रखे उरतारे, गुर के शब्द मरे मन मारे। होमे जाए सुमाया, आमन जाने पर जब गोई। बिन सदगुर थिर कोई ना होई। अंतर ज्योत शब्द सुख वसया, ज्योति ज्योत मिलाया। पांच दूत चितवे विकारा, माया मोह का यो पसारा। सदगुर सेवे ता मुक्त होवे, पांच दूत बस आया। बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारो वारा। सदगुर भेटे सच दृढ़ाए, सच नाम मन पाया। साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेवे शब्द प्यारा। सच्ची तुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माए सुमाया। करे अंदर को कर पाए, गुर के शब्द सहज सुभाए। ओथे सोग वियोग ना व्यापे, सहजे सहे सुमाया। दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिरे बहु मोह प्यासा। कुसंगत बह सदा दुख पावे, दुखो दुख कमाया। सदगुर बाजो संगत ना होई, बिन शब्दे पार न पाए कोई। सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति ज्योत मलाया। काया बिरख पंखी विच वासा, अमृत चुगे गुर शब्द निवासा। उड़े ना मूले ना आवे ना जाही, निरकर वासा पाया। काया सोधे शब्द विचार है, मोठ गौरी परम निवार है। आपे कृपा करे सुखदाता, आपे मेल मिलाया। सदगी नेड़े दूर न जानो, गुर के शब्द नजीक पछाणो। बिगसे कमल किरण परगासे, प्रगट कर देखाया। आपे करता सच्चा सोई, आपे मार जीवाले अवर न कोई। नानक नाम मिले वडियाई, आप गवाए सुख पाया। मारू सोलहे महला चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। सच्चा आप सवार नहारा, अवन सूस बीजी कारा। गुरमुख सच वसे कट अंतर, फैजे सच समाई हे। सबना सच वसे मन माही, गुर प्रसादी सह समाही। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाई हे। सदगुर है ज्ञान सदगुर है पूजा, सदगुर सेवी अवर ना दूजा। सदगुर ते नाम रतन तन पाया, सदगुर की सेवा पाई है। बिन सदगुर जो दूजे लागे, आवे जाए प्रमरे अपागे। नानक तिन की फिर गद होवे, जे गुरमुख रह सरनाई है। गुरु प्री सदा

तन मांगे प्रो बहु बदतावे, जो पावे सो आन दिखावे। एक वस्त को पहुँच न सके, तन रहती भूख प्यासा हे, तान करे बिनो दो कर जोर, प्रे प्रदेश न जाहो वसो कर मोर। ऐसा बंज करो ग्रे पीतर, जित पुत्रे भूख प्यासा हे, सगले कर्म तर्म जुग सादा, बेनहा रस सु तिल नहीं लादा। पई कृपा नानक सत्संग, तो तन पेर आनंद उलासा हे, तन अंधी पिर चबल सियाना, पंच तत का रचन रचाना। जे वखर को तुम आए हो, तो पायो सतगुर पासा हे, तन कहे तू वस मैं नाले, त्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिनाम हो कित ही ना लेखे, वचन दे छोड़ ना जासा हे। फिर कहया हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकुर जे कान ना छंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊर से दासा हे। जो प्रे भजन कहे तन साचे, तन कछु न समझे चंचल काचे, बहोर बोर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा हे। आई आज्ञा फिर हो बुलाया, ना तन पुशी ना मता पकाया, ऊर सधायो शूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा हे। रे मन लोभी सुन मन मेरे, सदगुर सेव दिन रात सदेरे, बिरसा गुर पच मोए सागत, निगुरे गल जम फासा हे। मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख भोग, गुरमुख लेपना मासा हे। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, से कौन मिटावे जे प्रप है राया। सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा हे। हों बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते भजन के सूरे। ऐसा प्र मिलया सुखदाता, विछड़ न कत ही जासा हे। गुण निधान किस कीम न पाई, घट घट पूर रहे हो सब ठाई। नानक शरण दीन दुख पंजन, हों रेण तेरे जो दासा हे। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कड़ कड़ पूर्ण सिर सिरे नबेरा। सिर साहा के सच्चा साहेब, और नाही को दूजा हे। हरखवंत आनंत दयाला, पलट रहे हो प्रभ सर्व उजाला। रूप करे कर वेखे विगसे, आपे ही आप पूजा हे। आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा। आपे खेल खिलावे तिन राती, आपे सुन सुन पीजा हे। साचा तख्त सची पातशाही, सच खजीना साचा साही। आपे सतारे सब साचा, सच्चे सच वर तीजा हे। सच तपावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रतेरा। सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सो कीजा हे। एक आप तू हुए वड़ा राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा। अंतर बार सब के जाने, आपे ही आप तीजा हे। तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी। सर्व सुख सहज कर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जागे। तेरी दात तुझे ते होवे, दे दान सबसे जंत लोवे। तोड़न आवे पूर पंडारे, तृप्त रहे आक ही जागे। जाचे सिर साधक बनवासी, जाचे जति सती सुखवासी। एक दा तार सगल है जाज, दे दान सृष्टि जागे। करे भगत आरंग अपारा, खिन में थाप्यो था पनहारा। पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगति जाहे। जे दे दर्श सोई तुद जाने, ओ गुर के शब्द सारंग माने। चदर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे। जे चीत आवे सो वे परवाह, जे चीत आवे सो सचा साहा। जे चीत आवे तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जाहे। तिस ना बूझी अंतर ठंडा, गुर पूरे ले टूटा गंडा। सोरत शब्द हृद अंतर जागी, अम्यो चोल चोल पी जागे। मरे नाही साध सदगी जीवे, अमर पया अवनासी थीवे। ना को आवे ना को जावे, गुर दूर किया परमी जागे। पूरे गुर की पूरी बाणी, पूरे लागा पूरे माए सुमाणी। चढ़े स्वाया नित नित रंगा, कटे नाही तो ली जागे। बारहा कंचन शुद्ध कराया,
نظر سراب ونی سچڑایا پرخ جانے پایا سراپی پھر نہ ہی تائی جائے امرت نام تمہارا سوامی نانک داس دا قربانی سانت سنگ ماں سو پایا

जन्म मरण की मिटवी डंजा कर गे काड़ लिगे प्रवे अपने हमें तार धिर टंगना एको एक रवैया सब ठाई जिबन दूजा कोई नाही आद मद अंत प्रवरवया कृष्ण पूजी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सदभग संद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सबके स्वामी जो सुनना सो प्रभु की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जातक जाते तुम्हें आराधे पद पावन पूर्ण प्रसाद एक को दान सरस गुण निध आन मंगरन है किंचना काया पात्र प्रव करने गारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी गरबाणी मन नाम जीठे रंगना सोल है कला संपूर्ण फलया अंत कला हुए ठाकुर चढ़या अंध विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोल है महला पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद तू साहिब हो सेवक कीता जीव पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तू पाणा से कर्म कमाए तुते

तिनकी तूड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरे नाही काहू बेरा। इनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई। एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार तजाए, ते जन को उपदेश निर्माल का, तुद बिन नाही कोई मेरा। गुर पकड़ाए प्रभु के पैरा, हों बलिहारी सदगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रा बिसरे नाही। आड़ पैर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राते, तू समरथ वडाल का। मारू महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदे नितारी, गुरपूरा खिन खिन नमस्कारी। तान मन अर्प तई सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे सास वारे। सास ग्रास सुमाले, करता कीता अपना पावना, जाते बिरता को नाही। आड़ पैर हर रख मन माही, साध संग पाच अचुत स्वामी, दरगे सोभा पावना। चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध, नाम निधान सह सुगनौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाह है, मेरे साधु स्वामी रावणा। सात सिमरत वेद बखाणी, जन्म पदार्थ जीत पुराणी, ताम क्रोध निंदा पर हरिये, हरसना नानक गावना। जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहया दिन राती, जो जो जपे सोई वड़फागी, बौड़ ना जो नी पावना। जिसनु बिसरे पुरख बेदाता, जलता फिरे रहे निताता, अकिरत कणे को रखे ना कोई, नरक कोर में पावना। जियो प्राण तन तन जिन साजया, माद गर्भ में रख निवाजया, तेस्यो प्रीत शाट अनराता, काहू सिरे ना लावना। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, कड़कड़ वस्ते सबन के नेरे, हाथ हमारे कछुए नाही, जिस जनाए तिसे जनावना। जाके मस्तक तुर लिख पाया, तेसी पुरख न व्यापे माया, नानक दास सदा शरणाई, दूसर रवे ना लावना। आग्या दूसू सब कीने, अमृत नाम बिरले ही चीने, ताकि कीमत कहण न जाई, जल कद ओई समावना। तोई भगत सोई वड़दाता, तोई पूर्ण पुरख बेदाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना। मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नी बदे कटे ना कटाए, सुई हुए जे करते पावे, कह के आव न्यामना। अंध कूबते से ही काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गंडे, कृपा तार के कर अपने, मेरे साधु गोविंद त्यामना। तेरी कीमत कहण न जाई, अचरत रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगे जन तेरा, नानक बल बल जामना। मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला पहला, वेण गाहक गुण वेचिए, तौ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जे मिले, तौ गुण लाख विकाए, गुण ते गुण मिल पाईए, जे सतगुर माए सुमाए, मोल अमोल ना पाईए, वणजना लीजे हाट, नानक पूरा।

जगत ना चुर हीड़े सच चौ नानक सचो सच पौड़ी गुरमुख आपे बख्शो हर नाम समाने आपे भगती लाय गुर शब्द निशाने सनमुख सदा सोने सचे दर जाने आयथे ओथे मुक्त है जिन राम पछाने तन तन से जन जिन हर सेवया तिन हो कुरबाने सलोक महला पहला मैल कुचजी मरवड़ी काली मनो कसुद जे गुण होवन ता पिर रवे नानक अवगुण मुंद महला पहला साज सील सत संजमी सा पूरी परवार नानक ऐन सदा भली फिर के गेत प्यार पौड़ी अपना आप पछाणिया नाम निदान पाया कृपा करके अपनी गुर शब्द मिलाया गुर की बाणी निर्मली हर रस पी आया हर चनी चाखिया हंस ठाक रखाया हर पी सदा तृप्त भये फिर तिशना भुख गवाया सलोक महला तीजा फिर खुशगे तन रावगे तन उर नाम सिगार नानक तन आगे खड़ी सोभावंती नार महला पहला ससरे पे गे कंत की कंत अगम अथाहो नानक तन सुहागणी जो भावे वे प्रवाह पौड़ी तख्त राजा सोभ जे तख्ते लायक होई जिन्नी सच पछाणिया सच राजे से ए भूपत राजे न आखिए दूजे पाए दुख होई कीता क्या सालाइए जे जांदे बिल मना होई निचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे तो निचल होई सलोक महला तीजा सबना का फिर एक है फिर बिन खाली नाग नानक से सोहागणी जे सतगुर माए सुमागे महला तीजा मन के अधिक तरंग क्यों दर साहिब छुटी है जे राते सच रंग गूढ़े रंग अपार कै नानक गुर प्रसादी छुटी है जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है क्यों कीमत कीजे आपे सिट सब साजियन आपे वरतीजे गुरमुख सदा सलाई है सच कीमत कीजे गुर शब्दी कमल बेगासिया एव हरस पीजे आमन जाना ठाकिया सुख सहज सुवीजे सलोक महला पहला ना मैला ना तुंदला ना भगवा ना कच नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच महला तीजा सहज वनस्पत फुल फल पर वसे पैखंड नानक तरवर एक है एको फुल पे रंग पौड़ी जोजन लूजे मने स्यो से सूरे प्रधाना हर सेती सदा मिल रहे जिन्नी आप शाना ज्ञानिया का यो महत है मन माये समाना हर जीव का महल पाया सच लाए ते आना जिन गुर प्रसादी मन जीतिया जग तिन्ह जिताना सलोक महला तीजा जोगी हो वहां जग पवां धर कर भिख्या ले दरगे लेखा मंगिए केस किस उत्तर देओ भिख्या नाम संतोख मड़ी सदा

किए सो दर सेवे हो ना कोए, ऐसा सदगुर लोड़ लहो जे जेवड़ अवर ना कोए, ते शरणाई छूटिए लेखा मंगे ना कोए, सच दृढ़ाए सच दृढ़ सच्चा ओ शब्द दे, हृदय जिरदे सच है तन मन पी सच्चा होए, नानक सच्चे हो मन्ने है।

मरे दुख पावे, अंधे आपना पछाणनी, दूजे पज जावे, आत क्रोध स्यों लूज दे, अगे पिछे दुख पावे, हर जीव अहंकार ना पावई, वेद कूप सुनावे, अहंकार

जगमय राम नाम हर निर्मला उर्मैला सब आकार नानक नाम ना चेतनी होए मैले मरे गवार। महला तीजा दुख लगा बिन सेवे है हुक्म ने दुख जाए आपे दाता सुखे दा आपे देस जाए। नानक एवे जानिए सब केश तिसे रजाए पौड़ी हर ना बिना जगत है निर्थान बिन नावे तृप्त नाही दूजे परम भुलाया होमे दुख पाही बिन कर्मा किशु ना पाई है जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किसे आखिए दूजा को नाही। सलोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया जिन्ना सदगुर मिलया प्रव्याय सदगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए। इत तन पाए पुख लथी तुख वसया मन आए जिन्ना कौ तुर लिखया तिनी पाया आए। मनमुखो जगत निर्तन है माया नू बिरलाए अन दिन फिरदा सदा रहे भुख ना कदे जाए सांत ना कदे आवई नै सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए। नानक वेण सतगुर मत पवी सतगुर नू मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुखमय रहे सच्चे महे सुमाए। महला तीजा जेन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो तिस बिन अवर ना कोए। खाना शब्द चंगे आईया जिन खादे सदा तृप्त होए पहनण शब्द सुनाए है सदा सदा ओ उजला मेरा कदे ना होए। सहजे सतन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द सीगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनु आप वखा ले सोए पौड़ी अंतर जब तब संजमो गुर शब्दी जापे हर हर नाम ते आई है होमे अज्ञान गवापे अंदर अमृत पारपूर है चाख्या साध जापे जिन चाख्या से निरपो पे से हर अस्त्रा पे हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापे। सलोक महला तीजा लोक अवगुणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना विहाजे कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईन जिसनु नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आपकी ते करतार। नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराओ। खरे परख खजाने पाईन खोटिया नाही थाओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याओ अमृत का रस आया मन वस्या नाओ।

कीमत कहे कौन तू सृजा सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल राउन तू अपड़ कोई ना सके तू उबनासी जग उदरण तू थापे चारे जुग तू करता सगल तरण तुद आमन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रेण जिस होवे आप दयाल तिस लाभ है सदगुर चरण तू होर उपाय ना लभगी अवनासी सिष्ट करण दखणे मोहल्ला पंजवां जे तू वत्ते अंगणे अब तरत सुहावी होय एक सकंते भारी मैंडी वात ना पुछे कोए मोहल्ला पंजवां अबे टोल सुहावणे सो बैठा अंगण मल पाई ना वञे बिरथड़ा जो कर आवे चल मोहल्ला पंजवां सेज विशाई कंत कू किया हब सीगार इती मंझ ना सुमावई जेगल पैरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेसर जोन ना आवगी तू हुक्मी साजे सृष्ट साज सुमावगी तेरा रूप न जाई लखया क्यों तुझे ते आवगी तू सब मैं वरते आप कुदरत देखावगी तेरी पगत परे पंडार तोट न आवगी एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावगी जिस होवे आप दयाल तेस सदगुर सेवा लाभगी कदे न आवे तोट जो हर गुण गावगी दखणे मोहल्ला पंजवा जाम पसी हठ मैं पिरी बिहिंजे नाल हब्बे दुख उलायम

आपे सतवंत जति सती प्रव निर्मला मेरे हर भगवंत सा ब्रह्म प्रसार पसारयो आपे खेलंत एहो आवा गमन रचायो कर चोज देखंत इस भौड़ गर्भ ना पावगी जे देवे गुरमंत जो आप चलावे त्यों चल दे केश वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिये कुरिये वैद्या तल गाड़ा महरेर वेखे छिटड़ थीवंदो जाम खसंदो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आथड़ी मंज।

कर हीड़े हिक आधार त्यो संतन की रेण जित लभी सुखदा तार पौड़ी बिन कर्मा हर जियो ना पाई है बिन सदगुर मनुमा ना लगे धर्म तीरा कल अंदर है त्यो पापी मूल न तगे ऐ कर करे सो ऐ कर पाए एक कड़ी मोहत ना लगे चारे जुग में सोदया विण संगत अंकार ना पगे होमे मूल ना छुटई विण साधु सत्संग तिचर था ना पावई जिचर साहिब स्यो मन पंग जिन जान गुरमुख सेवया इस कर दी बाण अपगे हर कृपा ते सुख पाया गुर सतगुर चरणी लगे डखणे महला पंजवा लोड़िंदो हब जाए सो मीरा मीरन सिर हठ मजाऊ सोतनी चौदो मुख अलाए महला पंजवा माणकू मोय माओ डिणना तनी अपाह हियाओ मिंजा ठंडड़ा मुखों सच अलाए महला।

कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा, अराग मारू बाणी रविदास जीओ की। एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद ऐसी लाल, तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा। माथे छदर तरे रखाओ जाकी शोत जगत को लागे, ता पर तुही ठरे नीचे ऊच करे मेरा गोविंद। काहू ते ना डरे नाम देव कबीर तलोचन, सदना सहन तरे तै रविदास सुनो रे संतो। हर जी उते सवे सरे मारू सुख सागर सुर तर चिंता मान, काम ते बज जाके रे चार पदार्थ अष्ट महा सिद्ध। नवृद कर तलता के हर गा हर ना जब सरसना, अवर सब शाड बचन रचना रहाओ। नाना ख्यान पुराण वेद वेद चौतीस अक्षर माघी, व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरनाघी। सहज समाध उपात रहत होए बड़े पाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म मरण पै भागी। तुखारी संत महला पहला बारे माहा, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद तू सुन किरत करमा पुरब कमाया। सिर सिर सुख सुखमा देसो तू पला, हारचना तेरी कागत मेरी हर बिन कड़ी ना जीवा। प्रेबाज दुहेली गोए ना बेली गुरमुख अमृत पीवा। रचना राज रहे निरंकारी ब्राह्मण कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले सा तन तू सुन आत्म रामा। बाबी गा प्रयो बोले कोकल बाणिया, सा तन सबरस चोले अंक समाणिया। हर अंक समाणी जा प्रा पाणी,

तन तिर मेलो तन ओ माहे सरसी अवगुण मारी मरे न सीजे गुण मारी ता मरसी नाम भगत जे कर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो।

अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर सबदी हौ सतगुर कै बलिहारिये। सतगुर आगे सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे, आपे दया करो प्रदाते नानक अंक समावे। तुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरम

पूर रहया। सेप जन सेवे ते परवान, जिन सेव्या गुरमत हरे, तिनके कोट सा पाप, खेन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दोग सा बिनसे। जिन मन चित एक आराध्या, तिनका जन्म सबल सब किया करते, जिन गुरभजनी सच पाखिया, ते तन जानवर पुरख पूरे, जो गुरमत हर जाप पौ बिखम तारे। सेवक जन सेवे ते परवान, जिन सेव्या गुरमत हरे, तू अंतर जामी हर आप, ज्यों तू चलावे प्यारे, हाँ तिवे चला, हमरे हाथ किश नाहे।

सदगुर प्रसाद बिसर तनागे मन ते हरी आबे प्रीत महाप्रबल पही आन विखे जरी रगाओ बूंद का त्याग चातरक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उच्चा रसना टेव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रचरण कमल रसाल नानक गांठ बांध थरी केदारा महला पनवा प्रीतम बस्त।

ठिया मटिया संग न कछ ले जाए रघाओ देरी बैठी मेरी रोवे द्वारे लव संग माए मा हट लग सब लोग कुटंब मेल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुरपाटन बौर न देखे आए कहे त कबीर आराम की।

रूप रंग रस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालो, प्राणी हर जप जन्म गयो, साच शब्द बिन कहो ना छूड़स, बिरता जन्म पयो रखाओ। तन में काम क्रोध हो ममता, कठिन पीर अद पारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, एन बेद तार तू तारी, बहरे करण अकल पई होची, शब्द सहज नहीं बूझया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध न सूझया, रहे उदास आस निरासा, सहज ध्यान बैरागी, परमत नानक गुरमुख छूड़स, राम नाम लेव लागी।

राम ना बेन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे नेफल मन भ्रमना रखाओ पुस्तक पाठ दा करण वखाण संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त खा प्राणी राम ना बेन उर्ज मरे डंड कमंडल शिखा सूद तोती तीर्थ गमन अद प्रमण करे राम ना बेन सांत न आवे जप हर हर नाम तू पार परे जटा मुगट तन पसम लगाई बत्र छोड़ तन नगन पया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत के बंधे भेख पया जेते जी जंत जल थल मैयल जतर कतर तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले।

होय, निकर वसे सहज सुभाय, गुरमुख नाम से मन आए, आपे वेखे वेखणहार, नानक नाम रखो उरतार, भैरो महला तीजा, कलयुग में राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार, राम नाम दुलभ है पाई, गुर प्रसाद वसे

मुन केते बिन शब्दे सुरत न पाई, त्रै गुण सबे रोग वे आपे ममता सुरत गवाई। एक आपे काड लए प्रभ आपे गुर सेवा प्रभ लाए, हर का नाम निधानु पाया सुख वसिया मन आए। चौथी पदवी गुरमुख वर्त है तेन निकर वासा पाया, पूरे सदगुर कृपा कीनी विचों आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा बिशन रुद्र उपाया, नानक नेचल साचा एकु ना ओ मरे न जाया। पैरो मोहल्ला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी, रोगी सगल संसारा गुरमुख बूझे रोग गवावे गुर सबदी विचारा। हर जियो ससंगत मेलाए नानक किसनों दे वडियाई।

जम काल सदा है सिरे ऊपर, दूजे पाए पद खोई, बैले पेख पवे दिन राती, होमे रोग न जाई, पढ़ पढ़ लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुर सेवे परम गद पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिन्हां मन वसिया, दर साचे पद पाई, भैरो महला तीजा, मानमुख आसा नहीं उतरे, दूजे पाए खुआए, उधर न सान ना परिये कबहू, तिस न अगन पचाए, सदा आनंद राम रस राते, हिरदे नाम दुबदा मन पागी, हार गा अमृत पी तृप्ताते रहाओ, आपे पार ब्रह्म सृट जिन साजी,

अवगुण शब्द जलाए, जिन मन वस्या से जन सोहे, हृदय नाम वसाए, कार दर महल सदगुरु दिखाया, रंग सिवरलिया माने, जो उस कहे सो भला कर माने, नानक नाम वखाणे, भैरों महला तीजा, मसा मने समाए लय।

तुज लय उबार खिन मैं भयान रूप निकसा थम उपाड़ हरणागस नहीं बिदारिया प्रहलाद लिया उबार संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे गुर के शब्द होमे बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे।

अरहो अराम रसायन नित उड़ पीवो हार घर रसना कहो अरहाओ कल युग में एक नाम उधार नानक बोले ब्रह्म विचार पैरों महला पंजवा सतगुर सेव सर्व फल पा।

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, ना बिना सब जग बौराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, ना बिना साध सड़गी चूरे, बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान, बिन पेखे को कैसो ध्यान, बिन

अंदरै रती ना पावे, बिन सदगुर रोग तथे ना जावे। पार ब्रह्म जिस की नींद आया, बां पकड़ रोगों कट लया। टूटे बंधन साथ संग पाया, कहो नानक गुर रोग मिटाया। भैरो महला पंजवा, ईत आवे ता महा आनंद। ईत आवे ता सब दुख पंज, ईत आवे ता श्रद्धा पूरी। ईत आवे ता कभे न चूरी, अंतर राम राय प्रगटे आए। गुर पूरे दियो रंग लाए, हरहाओ ईत आवे ता सर्व को राजा। ईत आवे ता पूरे काजा, ईत आवे ता रंग गुलाल। ईत आवे ता सदा निहाल, ईत आवे ता सत धनवंता। ईत आवे ता सदने प्रंता, ईत आवे ता सब रंग माणे। ईत आवे ता चूकी काणे, ईद आवे ता सहज कर पाया। ईद आवे ता सुन समाया, ईद आवे सद कीर्तन करता। मन मानिया

हर घर जपना कहो नानक जो जन प्रापाए ताकी रेन बिरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप ना आलक आवे बेसवा भजत किश न शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमन की वेला बजर सिर परे माया लग फूलो संसार आप भुलाया भुला मनहारे राच रहया बिरथा व्योहार रगाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्योहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं पावे करत करत भी दुख पाया पूर्ण होत न कार्ज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ जो जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन नमसाए साच शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो निरपाई तार लय सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर इहो निदान सेजन दरगे पावे मान सोग सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न तावे ताओ जुगे जुगंतर इहो तत्सार हर सिमरन साचा बीचार जिस लड़ लाए लय सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जन सब तेरे हाथ नानक के प्रसद की साथ भैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रवे अगर नाम सगुर पूरे कीनो दान नाम रतन मेरे पंडार अगम अमोला अभर अपार अरहाओ नाम हमारे नेचल तनी नाम की महिमा सब

स्वाओ नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लय अनहद पूरे नाद, प्रभु कृपा ते नाम नव निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों बने आई, तनवंते से ही प्रधान

प्रवासा सगल त्याव है प्रभु गुणतासा जब जब अंध करे तेरे दासा सिमर नानक साचे गुणतासा भैरों महला पंजवां।

राम नाम रिद्ध दियो निवास सदा आनंद नाही किज सोग दुख दर्द न व्यापे रोग सब के तेरा तू करने हार पार ब्रह्म अगु अपार निर्मल शोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पानी जल थर महील रविया सोए नानक सब प्रवते होए भैरो महला पंजवा मन ताराता राम रंग चरणे सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पैर गावत भगवंत सब गुर दीनो पूरा मंत सोवड़ पागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरे संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरे एक तो तनवंता जिस बुद्ध विवेक तो कुलवंता जे सिमरे स्वामी सो पतवंता जे आप शानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल निरहिन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण हृदय माए निवासा कहो नांग जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभु की सरना आप वित पाम सब कीने राम रसायन रसना चीने।

निमखना छोड सदगी साथ हर सा प्रीतम अवर ना कोय सार समाले साचा सोए माल पिता सुत बंद नारायण आद जुगाद भगत गुण गायन इसकी धार प्रभु का मन जोर एक बिना दूजा

पार ब्रह्म का निवास, तिद गुर कौ सद करी नमस्कार, तिद गुर कौ सद जाओ बलिहार, सतगुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर नानक जप जप स जीवा।

भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाव वीर माया नाव मेरे पूंजी, तुम्हें छोड़ जानो नहीं दूजी, नाव मेरे बंत पन्ना।

आए। ऐसा ज्ञान विचार मना हर की ना सिमरो दुख पंजना। अरहाओ जब लग सिंह रहे बन माहे तब लग बन फूले ही नाहे। जब की स्यार

कोड चंद्र में करे चराक, तुरते तीस उजेवे पाक, नाभरे कूड ठाडे दरबार, धर्म कूड जाके प्रतहार, पवन कूड चौबारे सिर है, बाजग कोट सेज बिस्तर है, समुद्र कूड जा

विद्या कोट सबे गुण कहे, तउ पार ब्रह्म का अंत न लहे, बावन कोट जाके रुमावली, रामन सेना जयते शली, सहस कोट भो कर्त पुराण, दुर्योधन का मथिया मान, कंदर्व कोट जाके लवे न तरह, अंतर अंतर मनसा हरे, कह कबीर सुन सार्ग पान, दे अपय पद मांगो दान, भैरों बाणी नाम दियो जियो की, कार पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद।

असंख कोट अन पूजा करी एक न पूस नामे हरी परमे नाम दियो इहो करना अंत रूप तेरे नारायण पर थान पर दारा पर हरी ताके निट बसे नर हरी जो ना

भगत जिना को देवरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखा बंद जल सेती काज, जैसी

उपाल गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा घर करता रहे साल कड़ी जा बीती सुनी अजो न आयो तिर पवन तहणी पाखंतन बाज बजाएला गरड़ चढ़े गोविंद आएला आपने।

संत हंडोल तार दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद साल ग्राम बेप पूज मनावो सुकृत तुलसी माला आराम नाम जा बेड़ा बंद हो

रह न सको दर्शन देखे बेन, सहज मिलो गुरमेल मिलाए अरहाओ, यो मन लोभी लोभ लुभाना, राम सार बौर पछताना, बिछिरत मिलाए गुर सेव रंगे, हर नाम दियो मस्तक उड़ पागे,

पावे, सदा सुख शरीर पाणे चित लावे, अपना प्रसेवे सहज सुपाए, नानक नाम से मन आए, बसंत महला तीजा, माया मोह शब्द जलाए, मन तन हरिया सतगुर पाए, सफलो बिरख हर के द्वार, साची बाणी नाम प्यार, ए मन हरिया।

गुर सबदी हर चेत सुपाए, राम नाम रस रहे अघाए, कोड़ कुटंत्र के पाप जल जाहे, जीव तुमरे हर नाम समाहे, हर की दात हर जीव जाने, गुर के शब्द एहो मन मोलिया, हर गुण दाता नाम खाने रहाओ, भगवे वेश प्रा मुक्त न होए, बहु संजम संत न पावे कोए, गुरमत नाम प्राप्त होए, वडभागी हर पावे सोए, काल में राम नाम वडियाई, गुर पूरे ते पाया जाई, नाम रते सदा सुख पाई, बिन नामे होमे जल जाई।

आपने रंग सब को रचे, जित प्रलाया ते तित लगे अरहाओ, मेघ समय मोर नृत्यकार, चंद देख बिगसे कौलार, माता बारक देख आनंद, त्यो हर जन जीवे जप गोविंद, सिंह रुचे सद पूजन मास, रण देख सूरे चित उलास।

प्रभु देह साध संगत में यो विश्राम सदा हृदय जपी प्रभु तेरो नाम तुझ बिन दूजा कोई नाहे सब तेरो खेल तुझ में समाहे।

साधु संगत गुरे बताई ऊहा जपिए केवल नाम। साधु संगत पार ग्राम सगल तत् में तत् ज्ञान, सर्व ध्यान में एक ध्यान, हर कीर्तन में उत्तम तुना। नानक गुरमिल गाए गुना बसंत महला पंजवा, जिस बोलत

जन को पहुंच ना सकस कोए प्रवदास रखे कर जतन आप अखंड पूर्ण या को प्रताप गुण गोविंद ने दर्शन गाए नानक जीवे हर चरण ते आए बसंत मोहल्ला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रव करी माया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जब जीवे नानक राम नाम तारुत सुहावी जिद हर चित आवे बिन सदगुर दिसे बिल लांती सागत फिर आवे जावे रगाओ से तनवंत जिन हर प्रवरास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपय पद पाया गुर मिल नानक खसम ते आया साध संगत प्रभ कियो लिवास हर जप जप होई पूर्ण आस

सांत सहज गृह सद बसंत गुरपुरे की सरणी आए कल्याण रूप जप हर घर मंत्र रहाओ। सोग संताप कटे प्रवे आप गुर अपने को नित नित जा।

मन पूलो समझस साच नाए, गुरु शब्द विचारे सहज पाए रखाओ। मन पूलो परमस पावर तार, बिल बिरथे चाहे बहु विकार, मैग जो फासस कामहार, कड़ बंधन बाध्यो शीश मार, मन मुग्धो दादर भगत हीन, दर पलट सरापी नाम बीन, ताके जात न पाती नाम लीन, सब दुख सुखाई गुणे बीन, मन चले न जाई ठाक राख, बिन हरस राखे पत ना साख, तू आपे सुरता आप राख, हर तारण देखे जाने आप, आप पुराए किस कहो जाए, गुर मिले बिरथा कहो माए, अब गुण छोड़ो गुण कमाए, गुर शब्दी राता सच समाए, सदगुर मिले मत उत्तम होए, मन निर्मल हो में कड्डे तोए, सदा मुक्त बंद न सके कोए, सदा नाम खाने और न कोए, मन हर के भाणे आवे जाए, सब में एको केश पहन न जाए, सबको वरते हुक्म सुमाए, दू सू सब तिसर जाए, तू अपुल ना पूलो कदे नाहे, गुर शब्द सुनाए मत अगाहे, तू मोटो ठाकुर शब्द माहे, मन नानक मानिया सच।

तय लीने भगत राख, तिनका गुण अवगुण ना विचारे कोए। एवद देख मन लगा सेव, तबीर त्यायो एक रंग, नाम देव हर जीव बसे संग, रविदास ते आए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप, बसंत महला पंजवा अनक जन्म प्रमे जून माहे, हार सिमन बिन नरक पाहे, भगत बिहूना खंड खंड, बिन बूझे जम देत दंड, गोविंद पजो

दू सुग बांधो संसार मन उदरण का साजनाहे पाबंद नित पौत जागे ईठ मीत को सखा नाहे आ बीज आपे ही खावे जाके तीने होत बेकार से छोड़ चलिया खिण मैं गवार माया मोह परम्या किरतरे कर करम्या करने हार अलिप्त

मन पई उमंग घास चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे जहां जाएगे तय जल पखान तू पूर रहे हो सब समान।

प्रीत कुटुंब संबंधी माया मोह पसारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुविधा कर्म बेकारी अंतर रतन पदार्थ हित कौ दुरे न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर।

मेरा मन राम नाम मन मानी, मेरे हीरे सदगुरु प्रीत लगाई, मन हर हर कथा सुखानी रघाओ। दीन दयाल हो भोजन ऊपर, जन देव हो अकथ कहानी, संत जे नाम मिल गारस पाया, हर मन तन मीठ लगानी, हर के रंग रते बैरागी, जिन गुरमत नाम पछानी, पुरखे पुरख मिलिया सुख पाया, सौ चूकी आमन जानी, नैनी बिरो देखा प्रस्वामी, रसना नाम वखानी, श्रवणी कीर्तन सुनो दिन राती, हिरदे हर घर पानी, पंच जना गुर वसगत आने, तो उन मन नाम लगानी, जन नानक हर कृपा तारी, हर रामे नाम समानी, सारग महला चौथा, जप मन राम नाम पढ़ सार, राम नाम बिन थिर नहीं कोई, होर नेपल सा विस्तार रहाओ। क्या लीजे क्या तजिए बौरे, जो दिसे सोशार, जिस बेखिया को तुम अपनी कर जानो, ता छाड़ जाओ सिर पार, तेल तेल पल पल औद फुन घट, बूझ न सके गवार, जो कुछ करे जे साथ ना चाले, तो सागत का आचार, संत जना के संग

तित करे वाजे पंच शब्द वड़पाग मथोरा, तेन जन के सब पाप गए, सब दुख गए, सब रोग गए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए, तेन जन के हर मार कढे पंच चोरा, हर राम बोलो हर साधु, हर के जन साधु।

करत रहत निरहारी, तेन जन की सेवा थाए पई, जिनको किरपाल होवत बनवारी, हर के हो संत भले ते उत्तम भगत भले, जो पावत हर राम मुरारी, जिनका अंग करे मेरा स्वामी, तिनकी नानक घर पैज सवारी। सारग मोहल्ला चौथा पड़ताल, जप मन गोविंद हर गोविंद गुणी निदान, सासृड का प्रभु मेरे मन हर बोल, हर पुरख अविनाशी रघाओ, हर का नाम अमृत हर हर हरे, सो पिए जिस राम प्यासी, हर आप दयाल दया कर मिले, जिस सदगुरु सो जन हर हर अमृत नाम चखासी, जो जन सेव है ससदा मेरा हर घरे, इनका सब दुख परम पौ जासी, जन नानक नाम लए ता जीव है, ज्यो चातक जल पिए तृप्तासी। सारग मल्ला चौथा जप मान श्री राम, राम रमत राम सत सत राम, बोलो भैया सद राम राम, राम रव रहा सरबगे रघाओ, राम आपे आप आपे सब करता, राम आपे आप आप सप्त जगे, जिस आप कृपा करे मेरा राम राम राम राय, सो जन राम नाम लिव लागे, राम नाम की उपमा देखो हर संतो, जो भक्त जिना की पत राखे, वेत कलयुग अगे, जन नानक का अंग किया मेरे राम राय, दुश्मन दूख गए सब पगे। सारंग महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, सदगुर मूर्त कौ बल जाओ, अंतर प्यास चातक ज्यो जल की, सबल दर्शन कर पाओ रघाओ, अनाथा को नाथ सर्वप्रद पालक, भगत वशिल हर नाओ, जा को कोई ना रखे प्राणी, इस तू दे असराओ, नितरिया तर निगतिया गत, निथाविया तू थाओ, दस जाओ ता तू संगे, तेरी कीर्त कर्म कमाओ, एक ते लाख लाख ते एक, तेरी गतमत कह ना सकाओ, तू बेअंत तेरी मित नहीं पाईगे, तब तेरो खेल दिखाओ, साधन का संग ताश्यो गोष्ट, हर साधन स्यों लिवलाओ, जन नानक पाया है।

करे सवरता जो सबरी दमपान। प्रभु भुलाए उजड़ पाए नेफल सब करमान। सो ज्ञानी सो बैसनो पढ़या जिस करी कृपा भगवान। हुन सतगुर सेव परम पद पाया उधरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किश कथ नहीं जाने प्रभु पावे तिवे बुलान। सा संगत की तूर एक मांगो जन नानक पयो सरान। सारग महला पंजवा अब मोरो नचनो रहो। लाल रंगीला सहजे पायो सतगुर बचन लहो रगाओ। पुआर कन्या जैसे संग सहेरी प्रिया बचन उपहास कहो। जौ सुर जन ग्रह पीतर आयो तब मुख काज लजो। ज्यो कन को कोठारी चढ़ो कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पय गए बार है तब ते थान थिरो। जौ दिन रैन तउ लो बजो मूर्त करी पलो। बजावन गारो ऊर सुधारो ता फिर बाजना पयो। जैसे कुंभ उदक पूर आन्यो ता को पिन दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मैं डारो अंबे अंब मेलो। सारग महला पंजवा अब पूछे क्या कहा लेनो नाम अमृत रस नीको। बाबर देश्यों गहे रहा रखाओ दुर्लभ जन्म किरण काल पायो। जातो कौडी बदलहा काथूरी को गाक आयो। लाद्यो कालर बिरख जिवगा आयो लाभ लभन के ताई। ऊंठा गौरी स्यों उर्ज पहा काज बादरे लाल खोई है फिर अवसर कद लगा। सगल पराध एक गुण नाही ठाकर छोड़े दास पजहा। आई मस्त जड़वत की न्याय जो तस्कर दर सानेगा। आन उपाओ न को सूज हर दासा सरणी पर रखा। कहो नानक तब ही मन छुटिए जो सगले औगन मेड़ तरगा। सारग महला पंजवा माई तीर रही प्रे बो

सदगुर प्रसाद कैसे कहो मुए जी बेदनाई, दर्शन प्यास प्रेप्रीत मनोहर मान ना रहे बहुविध उमकाई रखाओ, चितवन चितवो प्रेप्रीत बैरागी तद पावो हर दर्शाई, जतन करो तो मन नहीं पीरे को है रे संत मिलाई, जब तब संजम पुन सब होम अर्पो सब सुख जाई, एक निमुख प्रे दर्श दिखावे ते संतन कहे बल जाई, करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई, मान अपमान हो सगल त्यागो जो प्रे बात सुनाई, देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सदगुर पुरख मिलाई, प्रवरंग दयाल हुए गृह में पाया जन नानक तप्त बुझाई, सारग महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही, नरक कोर में उर्तव करता नेमक नेमक गुण गाही, अरहाओ आनक जन्म प्रमतो ही आयो मानस जन्म दुलभाही, गर्भ जोन छोड़ जो निकसेओ तव लागो अनठाही, करे बुराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही, कण नाही तो गान लागे ताए ताए दुख पाही, मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज परयो कुसुमाही, तर मराए जा पगस बगरे तो काल मुखा उड़ जाही, सो मिलया जो प्रभु मिलाया जिस मस्तक लेख लिखाही, कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अल्प रहे मन माही, सारग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई, जाके बिशरत होत मृत का गृह में रहन न पाई, रघाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सहाई, करो कृपा संतो मुए अपनी प्रा मंगल गुण गाई, चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई, जे प्रसाद मिल गए प्रभु नानक

छूटते गुर की सुहागन, हर पायो सुगड सुजानी। जे कर्म बैसन नहीं पावत, सो थान मिलो बासानी। उनके बस आयो भगत बच्छल, जिन राखी आन संतानी। कहो नानक हर संग मन मानिया, तब चूकी कान लुकानी। सारग महला पंजवा अब मेरो, पंचा ते संग टूटा। दर्शन देख पए मन आनंद, गुर कृपा ते छूटा रखाओ। बेखम थान बहुत बहुत तरिया, अनक राख छू रूटा। बेखम गार कर पहुंचे नाही, संत सांत पै लूठा। बहुत खजाने मेरे पाले परिया, अमोल लाल आखूटा। जन नानक प्रभु कृपा तारी, तौ मन में हारस कूटा। सारग महला पंजवा आब मेरो, ठाकुर स्यो मन लीना। प्राण दान गुर पूरे दिया, उरजायो ज्यो जरमीना। रखाओ काम क्रोध लोभ मद मस्तर, ए अर्प सगल दान कीना। मंत्र दरड़ाए हर औखद गुर दीनो, तो मिलो सगल पर बीना। गे तेरा तू ठाकुर मेरा, गुर हो खोई प्रभ दीना। कहो नानक मैं सहज कर पाया, हर भगत भंडार खजीना। सारग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है, छुट्टे संघार निमक कृपा ते। कोट ब्रह्मंड उधार है रघाओ, करे अरदास बहुत बेनंती। निमक निमक सा महार है, हो कृपाल दीन दुख पंजन। हा दे निस्तार क्या ए पूपत बपरे कही है, कहो ए किसनू मार है। राख राख राख सुख दाते, सब नानक जगत तुमारे। सारग महला पंजवा आप मोहे, तन पायो हर नामा। पय अचिंत तृष्ण सा बुझी है, यो लिखियो लेख मथामा। रखाओ खोजत खोजत पयो बैरागी, फिर आयो दे गिरामा। गुर कृपाल सौदा यो जोरियो, हथ चिरियो लाल अगामा। आन बापार बंज जो करिए, तेते दुग सहमा। गोविंद भजन के निरपेवा पारी, हरास नानक राम नामा। सारग महला पंजवा मेरे मान, मिष्ट लगे प्रे बोला। गुर पां पगर प्रसे वालाए, सद दयाल हर टोला। रघाओ प्रभु तू ठाकुर सरप्रत पालक, मुए कलत्तर सहित सब गोला। मान तान सब तू है तू है, एक नाम तेरा मैं ओला। ये तख्त बसल है तो दास तुम्हारे, कस बढ़ावे केतक भोला। जन नानक के प्रापुरख बिधाते, मेरे ठाकुर अगे अतोला। सारग महला पंजवा रसना राम, कहत गुण सोहं। एक निमक उपाय समावे, देख चरत मन मोहं। रघाओ जिस सुने मन होए रहस अत, हृदय मान दुख जोहं। सुख पायो दुख दूर परायो, बन आई प्रभु तोहं। केल गए मन निर्मल होई गए, गुर काढे माया द्रोहं। कहो नानक मैं सो प्रापाया, करण कारण समर्थोहं। सारग महला पंजवा नैनो देखो चलत तुमासा, सबहू दूर सबहू ते नेर। आगम आगम कटवासा, रहाओ अपूल ना पूले। लिखियो ना चलावे, मता ना करे पचासा। खिन में सा सुवार बिनाहे, भगत वशल गुण तासा। अंध कूब में दीप गबले हो, गुरदे कियो परगासा। कहो नानक दर्श पेग सुख पाया, तो पूर्ण होई आसा। सारग महला पंजवा चरणे गोविंद मार्ग सुहावा। आन मार्ग जेता जिताइए, तेतो ही दुखावा। रखाओ नेत्र पुनीत पय दर्श पेखे, हस्त पुनीत टहलावा। हृदय पुनीत हृदय घर बस्यो, मस्त पुनीत संत तूरावा। सर्वन दान नाम हर हर कहे, जिस कर्म लिखिया तिन पावा। जन नानक कौ गुर पूरा पेट्यो, सुख सहजे अनंद बिहावा। सारग महला पंजवा त्यायो अंत बार, नाम सखा। जे माल पिता सुभाई ना पहुंचे, तहां तहां तू रखा। रहाओ
अंधकूप गृह में तिन सिमरियो, जिस मस्तक लेख लिखा खुले बंधन मुक्त गुर कीनी, सब तू है तू ही दिख, अमृत नाम पिया मन तृप्तया, आगाए रसन चखा, कहो नानक सुख सहज मैं पाया, गुर लाही सगल तिखा, सारग महला पंजवा, गुर मेल ऐसे प्रभु ते आया, भयो किरपाल दयाल दुख पंजन, लगे न ताती बाया, रहाओ जेते सास सास हम लेते, एते ही गुण गाया, निमक न बिशरे करी न बिसरे, सत संगे जत जाया, हम बाल बाल बाल बाल

जब भूखो तब भोजन मांगे अकाए सुख कनारे, तब अरोग जब तुम संग बस्तो छुटक दुखोए रवारे, कवन बसेरो ता दासन को।

अंधकूपमय पतत होत जग संतो करो परम गत मोरी साध संगत नानक पयो मुक्ता दर्शन पेखत पोरी।

पंजवा हर घर दियो सेवक को नाम मानस का को बपरो पाई जा को राखा राम रहाओ आप महाजन आपे पंचा आप सेवक कै काम आपे सगले दूत बिदारे ठाकुर अंतर जाम आपे पदरा की सेवक की आप की ओ बंधान आजुगा सेवक की रख नानक को प्रभ जान सारग मोहल्ला पंजवा तू मेरे मीत सगा।

गाव जाके सूद परोए जनता किस प्रभु का जस गाव हो। सिमर ठाकुर जिन सब कुछ दीना आन कहां पे जाओ, सबल सेवा स्वामी मेरे की मन बाँच।

दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद अंद गुण गाया, बां पगर कढ़ लीने अपने, ग्रे अंध कूबते माया। कहो नानक गुर बंधन काटे, बिशरत आन मिलाए।

पंच दोख शिद्र या तरम है विखे ब्याध की करनी आस अपार दिनस गण राखे ग्रस्त जात बल जरणी अनाथे नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पय हरणी मन बांछित चितवत नानक दास।

समझ अचेत चेत मन मेरे कथी संतन अकथ कहानी लाभ लहो हर दे आराधो छुटके आमन जानी उदम सगत।

साध संग जिन हर घर जप्यो नानक सो परवाना सारग मोहल्ला पंजवा हर घर संत जिना की जीवन दिखे रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रखाओ संचन राम नाम तन रतना मन तन पीतर सीमन हर रंग रंग पय मन लाला राम नाम रस खीवन जो मीना जल से उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चातर्क की न्याई हर बूंद पान सुख थीवन

सेव करत अनसेवा बिरथा काटे काल। जा जम आए संघारे प्राणी तब तुमरो कौन होवाल। राख लेहो दास अपने को सदा सदा कृपाल। सुख निदान नान प्रा मेरा साध संग तन माल। सारग महला पंजवा मन तन राम को व्यवहार। प्रेम भगत गुण गावत गीदे होत नहे संसार रगाओ। श्रवणी कीर्तन सिमरन स्वामी

शरीर सब हुट्यो, सास गयो तद घाट रहाओ, अनास रियान उधरले पुखे माया गईया हाट। तिल भग करत करत पछतावे, कभू न साके शांत, निंदक जमदूती आए संघारियो, देवे मूंड ऊपर मटाक। नानक आपन कटारी आपस को लाई, मन अपना कीनू फाट, सारग मोहल्ला पंजवा टूटी, निंदक की अद बीच। जनका राखा आप स्वामी, बेमुख को आए पहुंची मीच। रहाओ उसका कहया कोई न सुनई,

दर्शन पेख मेरा मन मोयो, दुर्मत जात बही रगाओ, आगे अगाध ऊच अबनासी, कीमत जात ना कही, जल थल पेख पेख मन बिकस्यो, पूर रहो सर्व मही, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, मेरे साधे कीनो सही, सेमर सेमर जीवत हर नानक, जम की पीर ना फही, सारग महला पनवा मायरी मन मेरो मतवारो, पेख दयाल अंध सुख पूरन, हर रस रप्यो खुमारो रगाओ, निर्मल पै उजल जस गावत, बौर न होवत कारो, चरण कम सिउं डोरी राची, भेट्यो पुरख अपारो, कर गए लीने सर्बस दीने, दीपक पयो उजारो, नानक नाम रसक बैरागी, उले समूहा तारो, तारग महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे, त्या गोविंद जीन को दाता, माया संग लपटाहे रगाओ, नाम सार चले अनमार्ग, नरक कोर में पाहे, अनक सजाई गणतन आवे, गर्भ परमाहे, से तनवंते से पतवंते,

काम क्रोध निंदा पर हरिये काढे साधु के संगमार। जन्म पदार्थ गुरमुख जीतया बौर न जुए हार। आठ पैर प्रभु के गुण गावे

अनद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रट्यो नेह हो रहाओ प्यार कुंट दैद सजल निध ऊन थाओ ना के हो कृपा निध गोविंद पूर्ण जी दान सब देहो सत सत हर सत स्वामी सत साह संगे हो सत तेजन जिन प्रतीत उपजी

मोह मद मातो सिमरत ना गे हरे रगाओ साध संग जपते नारायण तिनके दुख जरे सबल दे तन ओए जन्मे प्रभ के संग रले चार पदार्थ अष्ट दिशा सिद्ध।

तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी पर तेरी जाए न लाखी। चरण कमल प्रीत मन विद्या कर सर्वस अंतर राखी। वेद पुराण सिमरत साधु जान ए बाणी रसना पाखी। जप राम नाम।

परा पूर्व जिसे लिखया बिरला पाए कोए, रावण गो गोपाल करते नानका सजोए। सारग महला पंजवा, हर के नाम की मत सार, हर विसार जो आन राचे मितन सब विस्थार रखाओ। साध संगम बज स्वामी पाप होवत खार, किरनार बिन बसाहिर दे

गुण गाए बिनसी सब अवमानी रगाओ तार अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्व सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्स त्यानी निकट वर्तन ससदा सुहागन तेज साई जानी प्रे रंग रंग रति नारायण नांग तिस कुरबानी सार्ग महला पंजवा तो चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साग तुम्हें संग राखन हार तुम्हें जगदीश रखाओ तू हमरो हम तुमरे कहिए एत उत तुम ही राखे तू बेअंत अपरंपर स्वामी पुर कृपा कोई लाखे बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जाको मेल लय प्रभ नानक सेजन दर गए माने सारंग महला पंजवा चौपदे कर पंजवा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर भज आन कर्म विकार मान मोह न बुझ तृष्णा काल ग्रह संसार गाओ खात पीवत हस्त सोवत औद बीति असार नरक उधर प्रमंत जल तो जमे की निसार पर द्रोह करत विकार निंदा पाप रत कर चार बिना सदगुर बूझ नाही ता मोह महा अंधार बेट खोरी खाए मुठो कितना सिरजनहार गोविंद गुप्त होय रहे न्यारो मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रसंत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक शरण आयो गोपाल पुरख अपार सार्ग महला।

प्रीत लाए हर त्याए गुण गोबिंद सदा गाए हर जन की रेन बांश दयनगार स्वामी सर्व कुशल सुख विश्राम आन दा आनंद नाम जम की कछ नाहे त्रास तिमर अंतर जामी एक शरण गोविंद चरण संसार सगल ताप हरण नाभ रूप साध संग नानक पार ग्रामी सारग महला पंजवा गुण लाल गावो गुर देखे पंचा ते एक छूटा जो साध संग पगराओ रगाओ दृष्टो का संग न जाए मान त्याग मोह एक घर प्रीत लाए मिल साध संग सोहा पायो है रे गुण दान सगल आस पूरी नानक मन आनंद पए गुर बिखम गार तोरी सारग।

काम करी सब त्याग के हो शरण परोगी। नानक स्वामी घर मिले हो गुरमनाब होगी। सारग मोहल्ला पंजवा ऐसी होए परी, जानते दयार रगाओ मातर पितर त्याग के मन संतन पाए बेचायो। जात जन्म कुल खोइए हों गावो हर हरी, लोक कुटुंब ते टूटिए प्रभ किरत किरत करी। गुरमुख उपदेसिया नानक सेव एक हरी, सारग मोहल्ला पंजवा लाल लाल मोहन गोपाल तू, कीड हस्त पाखान जंत सर्व में प्रतपाल तू रहाओ। ने दूर पूर हजूर संग सुंदर रसाल तू, ने बर्न बर्न ने कुले कुल नान प्रभ कृपाल तू। सारग मोहल्ला पंजवा करत केल बिखे मेल, चंद्र सूर मोहे उपजता विकार दुंदर। नौकरी चुनंत कार सुंदर अनेक पाओ करत फिरत, बिन गोपाल तोहे रघाओ तीन पौने लपटाए रही। काज कर्मना जात सही ओ मत अंध तंद रचत, जैसे महासागर होहे उधरे हर संत दास। काड दीनी जमकी फास पतत पावन नाम जाको, सिमर नानक ओहे एक ओ

मन मेरे हर की अकथ कहानी, हरिंदर करे सोई जन पाए, गुरमुख विरले जानी रखाओ, हर गैर गंभीर गुणी गहीर, गुर के शब्द पछानिया, बहुविध कर्म करे पाए दूजे, बिन शब्दे बहुरानिया, हर नाम नावे सोई जन निर्मल, फिर मैला मूल न होई, ना बिना सब जग है मैला, दूजे परम पद कोई, क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी, मैं ता बूझ न पाई, होए दयाल कृपा कर हर जियो, नम होए सकाई, सच्चा सदाता कर्म विदाता, जिस पावे ते नाए लाए, गुरु द्वारे सोई बूझे, जिसनु आप जाए, देख विस्माद जो मन नहीं चेते, आवा गौण संसारा, सतगुर सेवे सोई बूझे, पाए मोह द्वारा, जेंदर सूझे से कदे ना बिगाड़े, सतगुर बूझ बुझाई, सत संजम करनी किरत कमावे, आवन जान रगाई, से दर साचे साज कमावे, जिन गुरमुख सा

आधार नानक आप सदीव है। पूरा जिस पंडार वड्डा कर सालाही है, अंत न पारावार पौड़ी। हर का नाम निधान है, सेवे सुख पाई। नाम निरंजन उच्चरा पद स्यों कर जाई। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। मत पंखे रूवस होए,

दुख च जम्मण दुख मरण दुख वर्तन संसार दुख दुख अगे आखिए पड़ पड़ करे पुकार दुखियां पंडा खुलियां सुख ना निकले हो कोए दुख जियो जलाया दुखिया चलिया रोए नानक सिवती रत्या मन तन हरिया होए दुख की अग्गी मारिए पी दुख दारू होए मोहल्ला पहला नानक दुनिया पस रंग पसु हू पस खेहे पसो पस कमावनी पी पस परिये देह जा जियो विच्चों कड़िये पसु परे आ जाए अगे लेखा मंगे होर दसूनी पाए पौड़ी नाए सुने सुज संजम जम नेड़ न आवे नाए सुने कड़ चानना आरेर गुवावे नाए सुने आप बुझिए लाहा नाओ पावे नाए सुने पाप कटिए निर्मल सच पावे नानक नाए सुने मुख उजले नाओ गुरमुख त्यावे श्लोक महला पहला कर नारायण सभा नाल

काम क्रोध तृष्णा उचरे, दसवीं दसे द्वार जे ठक, एकासी एक कर जाने, द्वादशी पंच वसगत का रख, तो नानक मन माने, ऐसा वर्त रही जय पांडे, और बहुत सिख क्या दी जय पौड़ी, खूब तरा जे रंग राय, संचय बिख माया, कर कर हेत पधाए दे, पर दर्व चुराया, पुत्र कलत्तर ना विस है, बहु प्रीत लगाया, वेख दिया ही माया तोहे गई, पछते पछताया, जमदर बद्दे मारी है, नानक कर पाया, श्लोक महला पहला, ज्ञान विहूणा गावे गीत, भुखे मुल्ला करे मसीत, मखटू होए के कन पड़ाए, फगर करे होर जात गवाए, गुर पीर सदाए मंगन जाए, ताके मूल न लगिए पाए, काल खाए किस हथों दे, नान कराओ पछाणे से, महला पहला, मनो जे अंधे कूप, कया बिरद ना जाननी, मन अंधे उंधे कबल, दिसन खरे करूप।

अद पारी। मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव माया कै ब्योहारी, अंदर कपट उदर परण कै ताई, पाठ पड़े गावारी। सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन होमे विचो मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है।

लोभ लहर सुध मत गई, सच न लगे प्यार, गुरमुख जिना शब्द मन वसे दर गए मोख द्वार। नानक आपे मेल लय, आपे बख्शन हार, महला चौथा, नानक जिस बिन कड़ी ना जीवना, विसरे सरय ना बिंद, तेज ज्यों क्यों मन रूसी है, जिस हमारी चिंद, महला चौथा, सावन आया चिम चिमा, हर गुरमुख नाम ते आए, दुख पुख काड़ा सब चुकाए सी, मी हो मुठा शैबर लाए, सब तरत पई हरी आवली, आन जम्या बोहल लाए, हर अचिंत बुलावे कृपा कर, हर आपे पावे ताए, हर से ते आवो संत जनो, जो अंते लए छिड़ाए, हर कीर्त भगत आनंद है, सदा सुख वसे मन आए, जिन्ना गुरमुख ना

पौड़ी गुरपूरे की दात निर देवे चढ़े सवाइया तो देवे आप दयाल ना शपेश पाइया हिरदे कबल परगास उन मन लिव लाइया जे को करे उस दी रीस सिरशाई पाइया नानक अपड़ कोई ना सकई पूरे सदगुर की वड्याई है। श्लोक महला तीजा अमर वे प्रवाह है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुजत करनी जाए आव छोड़ सरनाए पवे मन ले रजाए गुरमुख जम डंडन लगई होमे विचों जाए नानक सेवक सोई आखिए जे सच रहे लिवलाए महला तीजा दात जोत सब सूरत तेरी बहुत सियाणप होमे मेरी।

कहां नार गर्भस थोरी बात, मंद नाज टका चार गांठी, आइडो टेडो जात रखाओ, बहुत प्रताप गांव सो पाए, दो लख टका बरात, दिस चार की करो साहिबी, जैसे बनघर पात, ना को ले आयो यो तन, ना को ले जात, रावण हूं ते अलक शत्र पा, हर के संत सदा सिर पूजो, जो हर नाम जपात, जिन को कृपा करत है गोविंद, ते सत्संग मिलात, मात पिता बंता सुत संपत, अंत न चलत संगात, कहे कबीर आराम पद बौरे,

माया कारण श्रम अत करे, सो माया ले गाडे तरे, आत संचे समझे नहीं मूड, तान तरती तन हो गयो तूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरे, साध संगत कबहू नहीं करे, कहत नाम जो ताची आन, निरपय होए पजिए भगवान, बदो की ना हो माधो मोस्यों, ठाकुर ते जान जानते ठाकुर, खेल परयो है तो स्यों रहाओ, आपन देव देवरा आपन, आप लगावे पूजा, जल ते त्रंग त्रंग ते है जाल, कहन सुन को दूजा, आपे गावे आपे नाचे, आप बजावे तूरा, कहत नाम देव तू मेरो ठाकुर, जन ऊरा तू पूरा, दास अनिम मेरो निज रूप, दर्शन निमख तात्री मोचन, परसत मुक्त करत ग्रे कूप रहाओ, मेरी बंदी भगत छिड़ावे, बंदे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोको गए बंद, तौ फुन मैं पो जवाब न होए, मैं गुण बंद सगल की जीवन, मेरी जीवन मेरे दास, नाम देव जाके जी ऐसी, तैसो ताके प्रेम परगास, सारंग एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, तय नर क्या पुराण सुन कीना, आन पावनी भगत नहीं उपजी, भूखे दान ना दीना रहाओ, कामना बिसरयो क्रोध ना बिसरयो।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग गुरप्रसाद खाना पीना हसना सौना विसर गया गए मरना खसम विसार खुवारी कीनी त्रिक जीवन नहीं रह।

जियां अंदर जियो तुही, गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, से ही सूचे हो ही। आहिरस नाम जपोरे प्राणी, मैले खच्चे हो ही। जेही रुत काया सुख तेह, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिरनावे रुत केही। मलार महला पहला।

गुण माया जिन जगत भोलाया, जन्म मरण का सहसा गुर प्रसादी एको जाने, चूके मनो अंदेसा हम दीन मूल।

मन की बिद सतगुर ते जाने अनदन लागे साधे घर स्यों ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दर के साची पावे मान यो मन खेले हुक्म का बद एक खिन मैं दह दिस फिर आवे जा आपे नजर करे घर पर साचा ता यो मन गुरमुख तत्काल वस आवे इस मन की बेद मन हूं जाने बूझे शब्द विचार नानक नाम ते

गुरमुख राम नाम मन पीजे हर सेती लिवलाई रहाओ। मेरा प्रभ आत अगम अगोचर गुरमत दे बुझाई, सच संयम करनी घर कीर्त हर सेती लिवलाई। आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मिलाई, देही काची पौन मजाए गुरमुख अमृत पाई। आपे साजे सबका रे लाए सो।

माया मोह अज्ञान गुबार, मन मुख मोहे मुग्ध गवार, अनदिन तंदा करत विहाए, मर मर जम्मे मिले सजाए, गुरमुख आराम नाम लिवलाई, कूड़े लालच ना लवटाई, जो किश होवे सहज सुपाए, हर्ष पीवे रसन रसाए,

नींद न पाए। यो विछोड़ा सहया ना जाए, सतगुर मिले ता मिले सो पाए। नामहीन बिन से दुख पाए, तृष्णा जलिया भूख न जाए। बिन भागा नाम न पाया जाए, बहुविध थाका कर्म कमाए। त्रै गुण बाणी वेद विचार, विख्या मैल विख्या वापार। मार जन्मे फिर होए खुवार, गुरमुख तुरिया गुण उर तार। गुर माने माने सब कोए, गुर बचनी मन शीतल होए। चौ जुग सोभा निर्मल जन सोए, नानक गुरमुख विरला कोए। राग मलार महला चौथा, कार पहला चौपदे एक ओंकार।

खाओ। अनक प्रकार भोजन बहु किए, बहु व्यंजन मिसटाए, करी पाक साल सोच पवित्रा, हुण लाभ पू घर राय, दुष्ट बिदारे साजन रहस्य, ए मंदर कर अपनाए। जौ ग्रे लाल रंगी यो आया, तौ में सब सुख पाए, संत सभा ओट गुर पूरे, पुरमस्तक ले।

हम एक गिनथ बिन रह ना सको, प्रीत हमारी लागी रहाओ। उनके संग मुए प्रवचित आवे, संत प्रसाद मुए जागी। तुन उपदेश पए मन निर्मल, गुण गाए रंग रंगी। इओ मन देख किए संत मीता, किरपाल पए बड़भागी। महा सुख पाया बन ना साको, रेन नानक जन पागी। मलार महला पंजवा, माई मोहे प्रीतम देहु मिलाई। सगल सहेली सुख पर सूती,

राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाओ एक पाल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नवे निद पाई उदाउद पयो पूर्ण भावी को पेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बिनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठिन पय सागर हर नानक चरण तिहाई मलार महला पंजवा कानघर बरस सगल जग छाया पए किरपाल प्रीतम प्रा मेरे आनंद मंगल सुख पाया रखाओ मिटे कलेस तृष्ण सा बूझी पार ब्रह्मन त्याया साध संग जन्म मरण मारे बौर न कतहू ताया मन तन नाम निरंजन।

आप गवाए कह कर साधन स्यो संग बाजे बजे मृदंग अनाद कोकलरी आराम नाम बोले मदर बैन अत सुइया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रे अमोग तैसे ही संग संत बने पाव उतार नाम पने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया।

गंधर्व अपसरा आनंद मंगल रस गावनी नीकी रहाओ। तोनत ललत गुनाग अनक पांत बहुविध रूप दिखावनी नीकी। गिर तार थाल जाल पावन परपुर काट काट लालन शावनी नीकी। साध संग रामई।

आकाशी बिरसे सहज सुपाई। प्रीतमा प्रीत बनी अब ऐसी ज्योति ज्योत मिलाई। यात्रक जल बिन प्रयो प्रयो टेरे बिरब करे बिललाई। कानहार कोर दसो दस बरस बिन जल प्यास न जाई। मीन निवास उपजे जल गीते सुख दुख पुरब कमाई। खेन तेल रह न सकै पल जर बिन मरण जीवन तिस ताई।

प्रयो प्रयो करे सबे है जेती, गुर पावे प्रयो पाई। प्रयो नाले सदगी सच संगे, नदरी मेल मिलाई।

अंध अंध नहीं सूझे, बद्धक कर्म कमावै, सतगुर मिले ता सूझस बूझस, सच मन ज्ञान समावै, निर्गुण

प्यारे बिन एक खेन रह ना सको, बिन मिले नींद ना पाई, पेर नजीक ना बूझे बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई, कहो नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन ना जाई। मलार महला पहला, अष्टपदियां कार दूजा, एक ओंकार।

पूजा लाया। दस अवतारी राम राजा आया, दैता मारे ताए हुक्म सवाया। ईस महेश्वर सेव इनी अंत ना पाया, सच्ची कीमत पाए तख्त रचाया। दुनिया तंदे लाए आप छपाया, धर्म कराए कर्म तुरों फरमाया। श्लोक महला दूजा, सावन आया हे सखी,

पौड़ी खंड पताल असंख मैं गणत न होई तू करता गोविंद तू सृजी तुदे गोई लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते होई एक राजे खान मलूक कह कहावे कोई एक सास दावे संच तान दूजे पद खोई एक दाते एक मंगते सबना सिर सोई विण नावे बाजारिया भी हावल होई ऊड़न खुट्टे नानका सच करे सो होई सलोक मुहला तीजा बाबिया गुणवंती मैल पाया अगुणवंती दूर अंतर तेरे हर वसै गुरमुख सदा हजूर।

बेअंत है गुणदाता निधान, नानक गुरमुख बगसलै अंत बेली होए भगवान पौड़ी। आपे जगत उपायक गुण अवगुण करे विचार, त्रै गुण सर्ब जंजाल है।

सच्चे शब्द निहालिया, नानक नाम निदान है पूरे गुरदे खालिया। सलोक महला तीजा, वाह भी है हुगम पछाणिया, गुर कै सहज सुपाए, मेघ वरसते दया कर, गूढ़ी शैबर लाए। बाबी के कूक पुकार रह गई, सुख वसिया मन आए। नानक सो साल आई है जे देंदा, सबना जिया रिजक समाए। महला तीजा, चातरक तू ना जान ही, क्या तुद विच तिखा है, किर पीते तिख जाए। दूजे पाए परमया, अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ना सतगुर मिले सुपाए। नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहा सुमाए पौड़ी। एक वाणखण बैसे जाए, साधना देव ही, एक पाला कक्कर पन्न शीतल जल हेव ही। एक पसम चिड़ावे अंग, मैल ना तोव ही। एक जटा बिगड़ बिगराल, कोल कर खोवही। एक नगर फिरे दिन।

अंधे का नाव पारखू, एवे करे गुवाओ, इल्त का नाव चौधरी, कूड़ी पूरे थाओ, नानक गुरमुख जानिए, कल का यो नियाओ मोहल्ला पहला, हरणा बाजा तहसिकदारा, इना पढ़िया नाओ, पंदी लगी जात पहायन, अगे ना ही ताओ, सो पढ़िया सो पंडित बिना, जिनी कमाना नाओ, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे, ता उपर हो वे शाओ, अराज सी मुकदम कुत्ते, जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहंदा पायन काओ, रात पेत कुत्ते हो चट जाओ, जिथे जिया हो सी सार, नक्की वड्डी लाए तबार पौड़ी।

रूप जात जोबन पंजे ठग इनी ठगी जग ठगया किने न रखी लज इना ठगन ठग से जे

अकल मन गोर न माने, मन कमीन कम तरीन तू दरिया ओ खुदाया। एक चीज मुझे देहे आवर जहर चीज ना पाया, पुराब खाम कूजे हिकमत खुदाया। मन तो आना तू कुदरती आया, सगनानक दीबान मस्ताना निध चढ़े सवाया।

प्रतहार तो ऐसा राजा श्री गोपाल जांचे कार गान गंधर्व रिखी बपड़े टाडिया गावंत अच्छा।

भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग हृदय राम गोविंद गुण सारंग हरहाओ सुरसरी सरल किरत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग तुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मिलत न हुए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे।

आवत जात रहे श्रम नसे सिमरत साधु संग पतत पुनीत होए खिन पीतर पार ब्रह्म कै रंग जो जो कथै सुने हर कीर्तन ताकि दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नान पूर्ण होवे आस तानड़ा मोहल्ला पंजवां साध संगत निधर को नाम संग सहाई जी के काम रखाओ संतरेन नित मज्जन करे जन्म जन्म के किल बिख हरे संत जना की ऊंची बानी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी कानड़ा मोहल्ला पंजवां साधु हर हरे गुण गाए मान तन तन प्राण प्रभ के सिमरत दुख जाए रखाओ ई पूत कहां लोभ आवे एक स्यो मन लाए महा पवित्र संत आसन मिल संग गोविंद त्याय सगल त्याग शरण आयो नानक लेहु मिलाए कानड़ा मोहल्ला पंजवां पेख पेग बिसाओ साजन प्रभ अपना एकांत रखाओ आन दा सुख सहज मूर्त तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जांत गुण रवंत दुख नस है रिद पय अंत सांत अमृता रस पीओ रसना नानक हर अंग रात कानड़ा मोहल्ला पंजवां साजना संत आओ मेरे रहाओ आनदा गुण गाए मंगल कसमला मिट जाए परेर संत चरण तरो मथ चांदना गृह हुए अंधेर संत प्रसाद कमल बिकस गोविंद भजो पेख नेर प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक ओ बेर कानड़ा मोहल्ला पंजवां चरण शरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख लीजे काट बेरी रखाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रतनागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रा मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निध पतत उदारन कोड़ जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दृढ़ायो कानड़ा मोहल्ला पंजवां तन ओ प्रीत चरण संग लागी कोड़ जावता सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाओ मुए अनाथ दाह जन तेरा अबर ओट सगली मुए त्यागी होर परम काटे प्रसिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाहो अद बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन तरयो प्रापागी कानड़ा मोहल्ला पंजवां कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जाने त्यों तार स्वामी रखाओ तू समरथ शरण योग तू राखे अपनी कल तार जाप ताप नेम सुसंजम नाही इन विदे छुटकार गर्त कोर अंध ते कड हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार चौथा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद।

अनक पांद की एक जाली ताकि गंठ नहीं शोराए फिरत फिरत नानक दास आयो संतन ही सरनाए काटे अज्ञान परम मोह माया लियो कंठ लगाए तानड़ा महला पंजवा आनंद रंग विनोद हमारे नामो गावन नाम त्यावन नाम हमारे प्राण आधार है हरहाओ नामो ज्ञान नाम इसनाना हर नाम हमारे कार्य सवार है हर नामो शोभा नाम बढ़ाई पौजल विखम नाम हर तार है अगम पदार्थ लाल अमोला।

हर संतना की रेन कियो अर्प देन प्रभ पय है किरपेन मान वो त्याग छोड़े।

संगा हठ निग्रह अतरैत बिटंगा हौं रोग व्यापे चुके न पंगा काम क्रोध आत त्रिसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा मोहल्ला पंजवां कार सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई गई मेरे साध जना पंच भागे चोर सहज सखैनो हरे गुण गावती गावती गावती दर्स प्यार रगाओ जैसी करी प्रामोस्यों मोस्यों ऐसी हो कैसे करो यो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रवतान तेरो केरो जित जंतन कर विचार अनक दास कीर्त करे तुहारी सोई मिले जो पावतो जन नानक ठाकुर रहो समाए।

अधिकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गए प्रभ आप काढ़ हो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संत।

गोपाल नानक हरस ना गुण गाए कानड़ा भला पंजवा वार वार अनक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रखाओ कनक मंदर पाठ सेज सखी मोहे नाहे इन स्यो तात मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बेहात।

तू है सदगुर, मैं सदगुर शरण मिलावे गो। कानड़ा मोहल्ला चौथा, मन गुरमत चाल चलावे गो। जो मैगल मस्त दीजे तल कुंडे, गुर अंकस शब्द दृढ़ावे गो। रघाओ चलतो चले चले दय दय दिस, गुर राखे घर लिवलावे गो। सदगुर शब्द देर दे अंतर, मुख अमृत नाम चुवावे गो। बिसियर बिसु परे है पूरन, गुर गरड़ शब्द मुख पावे गो। माया पुयंग तस नेड़ न आवे, बिग चार चार लिवलावे गो। स्वान लोभ नगर में सबला, गुर खिन में मार कढ़ावे गो। सत संतोख धर्म आन राखे, हर नगरी हर गुण गावे गो। पंकज मोह निगरत है प्राणी, गुर निगरत काढ़।

हर प्रसज्जन नाम हर मैं मन तन नाम शरीर सब ऐसा गुरमुख पूरिया जन नानक सुन घर तीर पौड़ी हर उत्तम घरिया नाम है हर पुरख निरंजन मौला जो जपदे हर घर दिन सरात तिन सेवे चरण नित कौला नित सार समाले सब जी जंत हर वसे निट सब जौला सो बूझे जिस आप बुझाए सी जिस सदगुर पुरख प्रसौला सब गावो गुण गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे गुण गावत गुणी समोला सलोक महला चौथा सुत्या हर प्रवचेत मान हर सहज समा समाए जन

चित जन नानक एक आधार हर प्रभ एक सते गत पत पौड़ी पंचे शब्द वजे मत गुरमत वडभागी अनहद वजया आनंद मूल राम सब देखया गुर शब्दी गोविंद गजया आद जुगाद वेश घर एको मत गुरमत घर प्रभ भजया हर देव हो दान दयाल प्रभ जन राखो घर प्रभ लजया सब धन कहो गुर सदगुरु गुर सदगुरु जित मिलघर पड़दा कजया श्लोक महला चौथा भगत सरोवर उछले सुबर परे वहन जिन्ना सदगुरु मनिया जन नानक वडभाग लहन महला चौथा हर घर नाम असंख हर हर के गुण कथन ना जाहे हर घर अगम अगाध हर जान केत विद मिले मिलाहे हर घर जस जपत जपंत जान एक तिल नहीं कीमत पाए जन नानक हर अगम प्रभ हर मेल लेहो लड़लाए पौड़ी हर अगम अगोचर अगम हर क्यों कर हर दर्शन पिखा किस वखर हुए सो वर्णिए तिस रूप ना रिखा जिस बुझाए आप बुझाए दे सोई जन दिखा सत संगत सदगुर चढ़ साल है जित हर गुण सिखा तन तन सो रसना तन कर तन सो पांदा सदगुरु जित मिल हर लेखा लिखा श्लोक महला चौथा हर हर नाम अमृत है हर जपिगे सदगुर पाए हर हर नाम पवित्र है हर जपत सुनत दुख जाए हर नाम तिनी आराध्या जिन मस्तक लिखिया तुर पाए हर दरगे जन पै नाइयन जिन हर मन वस्या आए जन नानक ते मुख उजले जिन हर सुनिया मन पाए महला चौथा हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए जिन तुर मस्तक लिखिया तिन सदगुर मिलिया आए तन मन शीतल होया सांत वसी मन आए नानक हर घर चौंदया सब दाल दे दुख ले जाए पौड़ी हों वारिया तिन को सदा सदा जिन्ना सदगुर मेरा प्यारा देखया तिन को मिलया मेरा सदगुरु जिन को तुर मस्तक लेखया हर अगम ते आया गुरमती तिस रूप नहीं प्रव रेखया गुरभजन ते आया जिन्ना

आरुतम गर प्रव नाम है गुरभजन सुभागे लीता दुख दाल दिल सबो लह गया जान नाव गुरु हर दीता सब सेवो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत्यो पाए सबो वस कीता। श्लोक महला चौथा मन अंतर होम में रोग है ब्रह्म फूले मन मुख दुर्जना नानक रोग वन्याय मिल सदगुर साधु सज्जना। महला चौथा मन तन ताम सगारवा जां देखा हर नैने नानक सो प्रामय मिले हो जीवा साध सुने पौड़ी जगन्नाथ जगदीशर करते अपरंपर पुरख अतोल हर नाम ते आवो मेरे गुरसिखो हारूतम हर नाम अमोल जिन त्याया हिरदे दिन सरात ते मिले नहीं हर रोल वडभागी संगत मिले गुर सतगुर पूरा बोल सब त्यावो नर नारायणो नारायणो जित चूका जम झगड़ चघोल। श्लोक महला चौथा हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या तिस फिर मार। महला चौथा अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन जे कर दूजा देख दे जन नानक कढ़ चन पौड़ी जल थल मई अल पूरनो अपरम

रामा राम रामे अंत न पाया। हम बारक प्रदपारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया। अरहाव हर के नाम असंग अगम है अगम अगम हर राया। गुणी ज्ञानी सुरत भो कीनी एक तिल ने कीमत पाया। गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत न पाया। तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बो जपगे था न पाया। उस्तद करे तुमरी जनमादो गुण गावे हर राया। तुम जल निध हा मीने तुमरे तेरा अंत न कतहू पाया। जन कहो कृपा करो मसूदन हर देवो नाम जपाया। मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया। कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसया। हर घर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाओ। गुर के पाग सिमरो दिन राती मन हर घर हर बसया। हर घर हर कीर्त जग सारी घस चंदन जस कसया। हर जन हर घर हर लिवलाई सब सागत खोज पया। ज्यो किरत संयोग चल्यो नर निंदक पग नागन छोए जलया। जन के तुम घर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखया। कहां पया दायत करी बखीली सब कर कर चर परया। जेते जी जन प्रभ किए सब कालय मोह ग्रसया। हर जन हर हर हर प्रभ राखे जन नानक सर।

श्रवण सुनिए अंग अंगे सुख प्राण रहाओ एत उत दह दिस रव्यो मेर तिन्हें समान जद कथा तद पेखी है हर पुरख पत प्रधान साध संग भ्रम पै मिटे कथे नानक ब्रह्म ज्ञान कल्याण मोहल्ला पंजवां गुरु नानक।

परस निपरस पै साधु जन, जन हर भगवान दिखीजै। सागत सूत बहु गुरजी परया, क्यों करतान तनीजै। तंत सूत केश निकसे नाही, सागत संग ना कीजै। सतगुरु साध संगत है निकी, मिर संगत राम रवीजै। अंत रतन जवेहर मान, गुर किरपा ते लीजै। मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी।

रामा राम, रामो राम रवीजे, साधु साध, साधन नीके, विल साधु हरं की जय रघाओ। जी जंत सब जग है जेता, मन डोलत डोल करीजे, कृपा कृपा कर साध मिलावो, जग थमन को।

आतरसन को दान दीजे, त्रागे त्राए सरन प्रवे आए, मुको गुरमत नाम जरडीजे, काम क्रोध नगर में सबला, नेत उठ और जूज करीजे, अंगीकार करो रख ले वो, गुर पूरा काड कढ़ीजे, अंतर अगन सबल अद बिगया, हे शीतल शब्द गुर दीजे, तन मन सांत होए अदकाई, रोग काटे सूख सवीजे, ज्यो सूरज करण रव्या सरबठाई, सब घट घट राम रवीजे, साधु साध मिले रस पावे, तत निरकर बैठिया पीजे, जन कौ प्रीत लगी गुरसेती, ज्यो चकवी देख सुरीजे, निरखत निरखत रहन सब निरखी, मोह काढे अमृत पीजे, सागत स्वान कही गए बो लोभी, बो दुर्मत मैल परीजे, आपन स्वाय करे बो बाता, तेरा का वसाओ क्या कीजे, साधु साध सरन मिल संगत, जित हर्ष काड कढ़ीजे, पर उपकार बोले बो गुणिया, मुख संत भगत कर दीजे, तू अगम दयाल दया पद दाता, सब दया ता रख लीजे, सर्व जी जग जीवन एको, नानक प्रतपाल करीजे, कल्याण महला चौथा, आरामा हम दासन दास करीजे, जब लग सास होए मन अंतर, साधु तूर पवीजे रगाव, शंकर नारद शेख नागमोन, तूर साधु की लोचीजे, पावन पावन पवित होए सब, जे साधु चरण तरीजे, तज लाज अंकार सब तजिए, मिल साधु संग रहीजे, तरमराय की कान चुकावे, बिग डुबदा काड कढ़ीजे, परम सूके बो उब सुग कहिए, मिल साधु संग हरीजे, ताते बेलम पल टिल ना कीजे, जाए साधु चरण लगीजे, राम नाम कीर्तन रतन वत, हर साधु पास रखीजे, जो बचन गुर सत सत करमाने, आगे काड तरीजे, संतो सुनो सुनो जन पाई, गुर काढ़ी बां को पीजे, जे आत्म को सुख सुख नित लोड़ो, ता सतगुर शरण पवीजे, जे बड़पा होए अतनीका, ता गुरमत नाम जरड़ीजे, सब माया मोह बिखम जगत तरीये, सहजे हरस पीजे, माया माया के जो अदकाई, विच माया पजे पचीजे, अज्ञान अंधेर महापंथ बिगड़ा, अहंकार पार लद लीजे, नानक राम अराम राम राम।

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद राग प्रभाती विपास महला पहला चौप दे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पद पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मने सब कोए विण नावे पद कभो न होए अवर स्याण सगली पाज जय बगसे तै पूरा काज रखाओ नाओ तेरा तान नाओ दीबान नाओ तेरा लश्कर नाओ सुल्तान नाए तेरे मान महत प्रवान तेरी नदरी कर्म पवे निशान नाए तेरे सहज नाए सालाह नाओ तेरा अमृत बिख उठ जाए नाए तेरे सब सुख वसे मने आए बिन नावे बाधी जम पुर जाए नारी बेरी घर दर देस मन किया खुशियां की चैवेस या सदे ता ठिल न पाए नानक कूड़ कूड़ो होए जाए प्रभाती महला पहला तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए अंधेर अंधी वापरे सगल लीजे खोए यो संसार सगल बेकार।

करमना ही तरमना ही नाही सुचमाला शिव जोत कन्नो बुद्ध पाई सदगुरु रखवाला जाके बरतना ही नेम नाही नाही बकबाई गात अवद की चिंतना ही सदगुरु फरमाई जाके आस नाही निराश नाही चित सुरत समझाई तंत कौ परम तंत मिलया नानका बुद्ध पाई प्रभाती महला पहला ताका कहया दर प्रवान बिख अमृत दुसम कर जान क्या कहिए सर्वे रहया समाय जोग।

मांगो हर गुण नानक रब तरह प्रभाती महला पहला आवत करे ना राख्या जावत क्यों राख्या जाए जिते होवा सोई पर जाने जा उस ही माए समाए तू है वाहो तेरी रजाए जो करे सोई पर होए बा अवरण करना जाए रहाओ जैसे हर की माला टिंड लगत है एक सखनी होर फेर भरियत है तैसो ही यो खेल खसम का जो उसकी वड्याई सुरती के मार्ग चल के उल्टी नजर प्रगा

गुण गावत मन होए आनंद, आठ पैर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कर मल जाहे, तिस गुर की हम चरणी पाहे, सुमत देव हो संत प्यारे, सिमरो नाम।

सब चिंद उभरे सतगुर चरणी लाग, जो गुर कहे सोई फल मीठा, मन की मत त्याग रखाओ, मन तन वसया हर प्रसोई, काल कलेश किस

अंध सहज रस सूख कनेरे दुश्मन दुख न आवे नेरे गुर पूरे अपने कर रखे हर नाम जपत केलबग सब लाथे संत साजन सिख पए सुहेले।

बिन नावे को साथ ना संगी, ज्यो मन देखे पर मन तैसा, जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिव लावे, तद गुर पूछ सहज कर पावे, राग नाद मन दूजे पाए, अंतर कपट महा दुख पाए, तद गुर भेटे सोजी पाए, सच्चे नाम रहे लिव लाए, सच्चे शब्द सच कमावे, सच्ची बाणी हर गुण गावे, निरकर वास अमर पद पावे, तां दर सच्चे शोभा पावे, गुर सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जे कोई, होमे मेरा सब देखोई, निर्मल नाम वसे मन सोई, इस जग

एको कर जान एहा मत शब्द है सार वे दुविधा माथे पवे शार करणी कीर्त गुरमत सार संत सभा गुण ज्ञान विचार मन मारे जीवित मर जान नानक नदरी नदर पछाण प्रभाती महला पहला दखनी गौतम तपा अहल्या स्त्री ते देख इंद्र लोभाया।

हर मंदर एहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, मानमुख मूल ना जाननी, मानस हर मंदर ना होए, हर मंदर हर जीव साजिया, रख्या हुकम सवार, तुर लेख लिखिया सो कमावना, ओए ना मेटन हार, शब्द चीन सुख पाया, सच्चे नाए प्यार, हर मंदर सबदे सोना, कंचन कोट अपार, हर मंदर एहो जगत है, गुर बिन घोरंग धार, दूजा पाओ कर पूज दे, मानमुख अंध गवार, जिथे लेखा मंगिए, जिथे दे जात ना जाए, साजर ते से उबरे, दुहे दूजे पाए, हर मंदर में

जागरण करे होमे मैल उतार सदा जागे कर अपना रख है पंच सकर कड है मार मन मेरे गुरमुख नाम ते आए जित मार घर पाईए मन से ही कर्म कमाए रखाओ गुरमुख सह तुन उपजे दुख होमे विच हो जाए हर नामा हर मन वसे है जे हर गुण गाए गुरमती मुख सोने

का बचन तिन बंध्यो पाला कोड़ मधे कोई संत दिखाया नानक तिनकै संग तराया जे होवे भाग ता दर्शन पाईए आप तरै सब कुटुंब तराईए रहाओ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किरवग सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मेल हरस पाया पार ब्रह्म हृदमाय समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाओ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त।

साई मेरा प्रभ रविया सर बैठा ई रघाव माने घाट माने पाठ माने गए पासारी माने बासे नाना पेदी परमत गए संसारी गुर के शब्द इहो मन राता दुबदा सह सुमाणी सब हुक्म हुक्म आपे निरपो समत बिचारी जो जन जान पदे पुरखोत्तम ताची अवगत बाणी नामा कहे जग जी मन पाया हिरदे अलख बिडाणी प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग ताका अंत न जानिया सर्व निरंतर राम रविया राव ऐसा रूप बखानिया गोविंद गाजे शब्द बाजे आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ बावन बिखू बाने बिखे पालते सुख लागला।

अस्त्र जो मान्यो देहे सो तो तेरो होए गए खेहे, क्यों ना हर को नाम लेहे, मूर्ख नलाज रे आराम भगत ही आन, चाड़ दे तै मन को मान, नानक जन ए बखान।

पुरख भगवान है, भगत वचल करुणामय है, घट घट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है।

हर हर हरे अनित रचना निर्मोत दानं परापूर्वेण कुंचन्ते महीपते विपरीत बुद्धि अंगमार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते बिरथा अनुग्रह गोविंद है जस सिमरण।

तरंग रूपं नाच दुर्लभं तुर्गराजन नाच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं नाच दुर्लभं स्वाश अंबर है नाच दुर्लभं सुत मित्र प्रात बांधव नाच दुर्लभं बनता विलास है नाच दुर्लभं विद्या प्रवीण नाच दुर्लभं चतुर चंचल दुर्लभं एक भगवान नाम है नानक लब्धयं साध संग कृपा प्रभं जात कत है तत दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमण गोविंद है नानक लेप शेपना लिप्यत विखया भयंत अमृतं दुष्टा सखा सुवजन दुखं भयंत सुखयं पय पीतं ता निर्भव थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है।

ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है, ज्ञानं हम दुख सुखं युक्त निर्मल निर्वारण है, दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है, भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है, उपदेशं

कंद मूलं बसंते समीप कह रहे ततरगते संसार है नानक सोग हरखं व्यापते छलं शिदरं कोड़ विघ्नं अपराधं केल बिख मलं।

रमंत गुण गोविंद नित प्रतय तारण शरण स्वामी रामण सील परमेश्वर है। करण कारण समर्थ है, दान देत प्रापूर्ण है। निराश आस करण सगल अर्थ आले है। गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है। दुर्गम स्थान सुगमं महादुख सर्व सुखण है।

नरक विश्रामं भोजोन्नि परमामण चेत हरणं त्रैलोक गम्यं जब तब शील विदारण अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समामण तब भय विमुंचन।

उपर्जते विख्यंत जीवं वस्यं क्रोत नृत्यं क्रोत जथा मरकट है अनक शासन ताड़ंत जम दूत है तब संगे अधवंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रखया क्रोत ए लोभा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जी या भो प्रकारं अनक पांद बोडोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधव नच मात पिता तव लज्जया अकरणं क्रोत अखात खाद्यं असाज्यं सार समझया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञाप्त नानक हर नर हर हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक माया विस्तीर्ण है अवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बो भोगण परम भयान उद्यान रमणं मां विकट असाध रोगण है पैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है करुणामय सब दुख हरो हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय तिमरंत नानक राम दामोदर माधव है चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तन है सार संगेण तरणं नानक महासागर पय दुत्र है सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं हस्त काया रखिया परमेश्वर है।

तथा वैष्णव न शंखं न चक्रं न गदा न श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जनमं नेत नेत कथंत वेद ऊच मूच अपार गोविंद है संत साध हृदय अचुत बुझंत नानक बड़ भागी है उदयान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियाल खर है विखम स्थान मन मोह मदरं मां असाध पंच तस्कर है हीत मोह पय परम ब्राह्मणं अंग फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध घोरं अगम तीर नय लंघन है भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है सा संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है श्यामलंग मधुर मानुखियं हृदयंग भूम वायरण है निवंत होवंत मिथ्या चेतनं संत सुवजन है अचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रत छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रास्ते अचंत पुरख कुटंब लीला नेत्यास विख्या विनोद प्रमंत प्रमंत भोजन महारयो शरण नानक करणामय हे जेबे हे रसगे मद्र प्रिया तोयं सत हदं परम बादं अवर्तित है शुद्ध अशरण गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोर मतंग बलवंत बलाद कारण है चरण कमल न पजंत तरण समान तिग जन्मन हे पपीर का ग्रस्ते गोविंद सिमरण।

अरचनंक सोमबरंगण है, रोग सोग प्रयोगं नानक सुख ना सुपन है। उनहे मोहल्ला पंजवां एक ओंकार सदगुर प्रसाद आद कलम अगर

काजल की कोठरी अंध परे तसुमाहे हौ बलिहारी तिन कौ पैस जो नीकस जाहे कबीर इओ तन जाएगा।

ना है तो लूट ले, आराम नाम है लूट। फिर पाशे पछताओगे, प्राण जाएंगे शूट। कबीर ऐसा कोई ना जन्मे हो।

वीर ऐसा सदगुरु जे मिले तुठा करे पसाओ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ। कबीर नाम होए शान ना छापरी नाम होए कर नहीं गाओ मत घर पूछे कौन।

आ क्या करे हृदय बसे गोपाल, कबीर रमैया कंठ मेल चूक है सर्ब जंजाल। कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराए, पंचो लड़के मार के रहे राम ल्यो लाए। कबीर ऐसा को नहीं त्यो तन देवे फूक, अंधा लोग न जानई रहो कबीरा कूक। कबीर सती पुकारे चेचड़ी सुन हो वीर मसान, लोग सुबाया चल गयो हम तुम काम दान। कबीर मन पंखी पयो उड़ उड़ दे दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तय सो फल खाए। कबीर जा को खोजते पायो सोई ठौर, सोई फिर के तू पया जा को कहता और। कबीर मारी मरो कुसंग की केले निकट जो बेर, ओ चूले ओ चीरिए साकत।

की मौज में रहो अंत अर आद। कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसे उन्मान, तैबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर देख के कह कहो तय ना को पतियाए, हर जैसा तैसा उही रहो हरख।

कबीर दावे दज होत है निर्दावे रहे निसंक, जो जन निर्दावे रहे तो गने इंद्र सो रंक। कबीर पाल समोहा सरवर भरा पी न सके कोई नीर, भाग बड़े ते पायो तू पर पियो कबीर। कबीर प्रभाते तारे खिसे क्यों।

का सफल फलंत पीर साधु संग प्राप्ति लिखिया होए ललाट। मुक्त पदार्थ पाई है थाक ना अब घट घाट। कबीर एक घड़ी आदि करी आदि हूं ते आद। भगतन से ती गोष्ट जो कीने सो लाभ। कबीर भांग माशली सुरा पान जो जो प्राणी खाहे। तीर्थ वर्त नेम किए ते सबे रसातल जाहे। नीचे लोयन कर रखो ले साजन कट माहे। स्वर्ग खेलो पीसो किसी लखावो नाहे। आठ जाम चौसठ करी

वीर जो तो साध पिरम की शीश काट कर गोए, खेलत खेलत हाल कर जो किश होए ता होए। कबीर जो तो साध पिरम की पाके से ती खेल, काची सरसों पेल के ना खर पई ना तेल। टूट डोले अंध गत हर चींत नही संत, तय नामा क्यों पाई है बेन भगतो भगवंत। हर सो हीरा छाड़ कह करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे

सुखी खाए कहे ठंडा पानी पियो। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। आज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। जाए पुछो डोहा गणी तुम क्यों रहन विखाए। सौरे ढोई ना लहे पेये ना गीताओ। फिर वातड़ी ना पुछई तन सुहागण नाओ। सौरे पेये कंत की कंत अगम अथाहो। नानक सो सुहागणी जो पावे बे परवाह। नाती धोती संभही।

फरीदा कोठे मंडप माड़िया एतना लाए चित मिट्टी पई अतोलवी होए ना होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए मर्ग सतानी चित तार साई जाए संभाल जिथे ही तो वंजना। फरीदा जिन्नी कमी नाए गुण एक कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद सवैये श्री मुख बाक महला पंजवां आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सरब रहो भरपूर सगल घट रहो बे आपे व्याप्त देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सर्व की रखिया करे आपे हर पत अविनाशी अवगत आपे आपे उत्पत एक तू ही एक आन नाही तुम पत हर अंत नाही पारावार कौन है करे विचार जगत पिता है सर्व प्राण को आधार जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार अमृत प्रवाह सार अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर अपनो भावन कर मंत्र ना दूसरो धर ओबद परलो एक नेमक तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मार कोट प्राशित जागे नाम लीगे हर हर जन नानक भगतदार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल पवन तारे एक ते की ए बिस्तारे पूर है ओ सर्वमय आप है निरारे हर गुण नागी अंत पारे जी जंत सब थारे सगल को दाता एक के अलख मुरारे आप ही धारण तारे कुदरत है देखारे वर्ण चेन नाही मुख नाम सारे जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निधानंग कीमत न ज्ञानंग ध्यानंग ऊचे ते ऊचो जा नीजे प्रभ तेरो थानंग मन तन तेरो प्राणंग एक सूत है जहानंग कम उपमा देओ बड़े ते बडानंग जाने कौन तेरो पेओ अलख अपार देओ अकल कला है प्रभ सर्व को थानंग जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बल बल बल बल सद बलिहार निरंकार आकार अशल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जा को होए कृपाल सोजन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जान जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परसयो छे जन्म मरण धोते रहो सत सत हर सत सत सत्ते सत पणिये दूसर आनना आवर पुरख पौरा तन सुनिये अमृत हर को नाम लयत मन सब सुख पाए जे रसन चाख्यो ते जन तृप्त अघाए जे ठाकर सो प्रसन्न पयो सर संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसयो तेन सब कुल कियो उधार सच सभा दीबान सच सच्चे पै करो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करो सच सिरजो संसार आप अफुल न फुल्लो रतन नाम अपार कीम न पवे अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख तिन हु पाए हर गुरु नानक जिन परसयो ते बौड़ फिर जोन न आए कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विद उस्तत करिए सिद्ध साधक ते तीस कोर तिर कीम न परिये ब्रह्माद कसन काद सिख गुण अंत न पाए आगो गयो नहीं जाए पूर सर्व रहो समाए ये काटी सिलक दयाल प्रभ हे जन लगे भगते हर गुरु नानक जिन परसयो ते एत उत सदा मुगते प्रभ दाताओ दातार परयो जाच एक सरना मेरे दान संतरेन जे लग पौजल परना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देव दर्श मन चाओ भगत हो मन ठहरावे बलयो चिराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल घर पावन में
ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਈਏ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹਨ ਬਾਂਧੀ ਸੜ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੁਗਿਆਨੀ ਧਾਵਤ ਪ੍ਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਬਦ ਮਤ ਵਿਚਰਤ ਵਿਕਲ ਬਡੋ ਅਭਮਾਨੀ ਪਰ ਥਾਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ ਯਹ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮਾਏ ਤਾਨੀ ਬਲਵੰਚ ਸ਼ਬ ਕਰ ਤਿਉ ਪਾਵ ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਵਯੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੁਚ ਨਾਸਤ ਆਯੋ ਸਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਰਖ ਲਿਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਕੀਰਤ ਕਰਨ ਸਰਨ ਮਨ ਮੋਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਪ ਵਿਦਾਰਨ ਕਹੋ ਹਰ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਸਮਰਥ ਸਭੇ ਬਿਦ ਕੁਲੇ ਸਮੂਹ ਉਧਾਰਨ ਸੋ ਚਿਤ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਜਾਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਅੰਧੇਰ ਮੋਹਿਓ ਕਦ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਚਸਾ ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਨਾ ਸੰਗ ਲਓ ਹੋਸ਼ੋ ਕਾਜ ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੰਧਨ

प्रेत खेद तन निर्मत दुर्लभ देशवार तरी खान पान सुधे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूज परी वर्धमान हो दिन प्रतनित आप तो निकट बिखा मजरी रे गुण हीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गए लो किरपाल किरपा निध नानक काट प्रम परी रे मन मूस बिला में गर्भत करतब करत महामुगना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमत खुगना सुध बंता साजन सुख बंदप तास्यो मुह बड़ेओ सो कना बोयो बीज अंग मम अंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार सारमुख निरखत उंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना केहन केहन नेना नीता माया मत कहां लो गारो शतरन पतरन चौर न चावर बैती जात हृदय ना बिचारो रतन असवन गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर्न वीरन मीर न खान संग न को दृट निहारो कोटन ओटन कोस न छोट करत विकार दू कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरग की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्री पदनाथ शरण नानक जान हे भगवंत कृपा करता रहो प्राण मान दान मग जो हुन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मी सुध पाई ताहू तेले रखी नरारी तामन पामन कूर कमान एवद करत औत तन जारी कर्म धर्म संजम सुच नेमा चंचल संग सगल बिदहारी पश पंखी बिरख स्थावर बोबद जोन प्रम्यो अद पारी किन पचसा नामनी सिमरयो दीना नाथ प्राण पसारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कदकारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह मादक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तारण गगन आतफुन तावत सिद्ध मानुख देव अर दानव एक दिलता को मर मन पावत प्रे प्राप्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत इसे त्याग आन को जाच है मुगदंत रसन सगल कह जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बिरंग करत भ्रम मुख कूप गुबार पर्यो है एता गब आकाशना मावत रिष्टा अस्त क्रिम उदर पर्यो है दैद ताए महा बिखिया कौ परतन छीन अज्ञान हरयो है जो बन बीत जरा रोग रस्यो जम दूतन डन मृत मर्यो है अनक जोन संकट नरक पुंचत शासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत उदरे से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फाल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुखवर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध माद मसर तृष्णा बिन सजाए हर नाम उचारी स्नान दान तापन सुज किरिया चरण कमल हृदय प्रोतारी साजन मीत सख हर बंधप जी तान प्राण आधारी ओढ़ गई स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रह चरण कमल संग दावन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पाप कजरयो ना जात अरयो जन तूर लग नीर न साक्ष बोर चले घर पंथ पाग नानक रोग दोख आग मोह छिदे घर नाम खग उदम कर लागे बो भाती विचरे अनक सात्र बो खटुआ पसम लगा तीर्थ बो प्रमते सूखम दे बंदे बो जटुआ बेनगर भजन सगल दो पावत जो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्कर करत सोम पाका अनक पांत हाटे कर थटुआ सवाई गे महले पहले के
एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियत ताज चरण ले हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावे गंभीर तीर मसागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्मराजन जान्यो तब कलश जद गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो गावे जिन काद जुगत जोगेसर हर्ष पूर्ण सर्व कला गावे सनकाद साध सिधाधक मुन जन गावे अशरशला गावे गुण तोम अटल मंडल व भगत पाए रस जान्यो काव काल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो गावे कपलाद आद जोगेसर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परसरामेसर कर कुठार रग तेज हरे हो उदो अक्रूर बेदर गुण गावे सर्वात्म जिन जान्यो तब कर सजद गावो गुरु नानक राज योग जिन मान्यो गावे गुण वर्ण चार खड़ दर्शन ब्रह मादक सिमरंथ गुणा गावे गुण शेष सहजे बारस आद अंतले लाग तुना गावे गुण महान देव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जान्यो कब कलश जस गावो गुरु नानक अराज योग जिन मान्यो अराज योग मान्यो बस्यो निर्वैर हृदंतर सिट सगल उदरी नाम ले तरयो निरंतर गुण गावे सनकाद आज जिन काद जुग गए लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग पाताल पुरी।

हो पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धर्म तनक कर गयो भगत सी लय सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल पान तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के

जंपो गुण बेमल सुजन जन केरे आमे नाम जा को फुरिया। इन सदगुर से शब्द रस पाया नाम निरंजन उर तरिया हर नाम रसक गोविंद गुण गाहक त्याग तत् संत सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सर अपर परे छुड़त प्रवाह अमे अमरा पद अमृत सरोवर सद परया ते पीवे संत करे मन मज्जन खुब जिनो सेवा करिया तिन पाओ निवार अनपय पद दीना शब्द मात्र ते उदर तरे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे सदगुर मत गूढ़ बिमल सत्संगत आत्म रंग चिलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशया अपय निरंजन करे लहा सदगुर दयाल हर नाम दृढ़ाया इस प्रसाद फल पंच करे कब काल ठगर हर दास तने गुर रामदास सार अपर परे आन पो उन्मान अगले लागी पारस फेटिया सहज करे सदगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिट्या जिन मात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब काल ठकर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे अपार परे पायो अपार निध अंतर तारयो दो पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर पाए प्रेम रसया पे जाने सदगुर कै प्रसाद सहज से तीरंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उच्चरै ते अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बस अमे रस रसन प्रकाश मिलत सा उपजै

सदगुर प्रमाण बिद नै सिरयो जग जस दूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितौ सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नाम रिद नाम निधान रिद सिता की दासी। तै सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

सदगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नी संभव्यो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपरपार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिहे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते भय सतगुर शब्द

सदगुरु नाम एक ले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, तारण तरण खिन मात्र जाको दृष्ट धारै।

जाको देखत दृदर जावे, नाम सो निधान पावे, गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो, सतगुर नाम एक ले मन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, धर्म कर्म पूरे।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर करे तरे उपरे लाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लह गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा थाप जोत जग तारी लैणे पंथ धर्म का किया अमरदास पल्ले को दिया ते श्री रामदास थोड़ी सिर थप्यो हर का नाम अखय निध अप्यो अप्यो हर नाम अखय निध चौ जुग गुर सेवा कर फल लईं बंधे जो चरण शरण सुख पावे परमानंद गुरमुख कहियं प्रतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूपोखण परण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जे अमृत बजन बाणी साधु जन जपे करब चित चाओ आनंद नित मंगल गुर दर्शन सबल संसार संसार सबल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते जीते जम लोक पत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रते रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंचे जाकी शरण सतगुर गुर सेव अला कद जाकी श्री रामदास तारण तरण संसार अगम सागर तुलहा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन मरण पगा ए आई ए प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन कहे तिन को पदवी उच पई तज माया मोह लोभ अर लाल काम क्रोध की बिरथा गई अब लोकया ब्रह्म परम सब छुटकया देव दृष्ट कारण करण सतगुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास पया जस जन कह एक पढ़े सुने गावे प्रभाते करे स्नान स्नान करे प्रभात सुधमान गुर पूजा विद सहित करं कं चिंतन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान तरंग जग जीवन जगन्नाथ जल थल महे रया पूर बोविद वर्णन सद गुर गुर सेव अलागत जाकी श्री रामदास तारण तरण जिनो बात निचल तू जानी तेई जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुद्र खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी संगत परमानंद गुरु मुख मचा श्री गुरु साहेब सब ऊपर मन भय क्रम सेविये सच्चा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो कमल नयन मधुर बयन कोड़ सैन संग सोभ कहत मां जसोद जिसै दही पाद खाए जियो देख रूप आतनूप मोह महा मग पई किंकनी शब्द चंतकार खेल पाए जियो काल कलम हुक्म हाथ कौ कौन मेड़ सकै ईस बम ज्ञान ध्यान हरत ही ये चाहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो आराम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेसुमार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेद तरयो हर नाग सहरयो नख बदार जियो संक चक्र गदा पद्म आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखे कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो पीत बसन पुंद दसन प्रिया सिद कंठ मार मुकट शीस मोर पंख चाहे जियो बेव जीर बड़े तीर
ਧਰਮ ਅੰਗ ਅਲਖ ਅਗਮ ਖੇਲ ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਉਸ਼ਾਏ ਜੀਓ ਆਕਾਸ ਕਥਾ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿਧ ਰੂਪ ਤਰਿਓ ਸਹਨ ਕੈ ਸਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੂਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਬਲੇ ਸ਼ਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਰ ਨੇਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ ਸਗਲ ਪਵਣ ਕੁਸਲ ਕਰਨ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾਦ ਦੇਵ ਸਹਿਸ ਮੁਖ ਫਨਿੰਦ ਜੀਓ ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਸ਼ ਕਸ਼ ਹੋ ਬਰਹਾ ਜਮਨਾ ਕੇ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀ ਏ ਧਾਰ ਤਜ ਕਾਰ ਮਨ ਗਏ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕਿਆ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ ਸਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਇਹ ਨਿਸ ਬਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਨ ਲਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜਨ ਜਨ ਸੁਛਾੜ ਤੋਹ ਹੋਮੇ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀ।

आर तल्पकार मन गए अंध, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रसदा सलामत, कह न सके को तू कद का, ब्रह्मा विष्णु सिरे ते अगणत, तिनको मोह पया मन मद का, 84 लख जोन उपाई, रिजक दिया सबहू कौ तद का, सेवक कहे भरपूर जुग जुग, वाहगुरु तेरा सब सदका, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जाल आपे थल थमन, आपे किया कड़ कड़ बासा, आपे नर आपे फुन नारी, आपे सार आप ही पासा, गुरमुख संगत सबे विचार हो, वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहेगुरु तेरी सब रचना, तू जल थल गगन पयाल पूर रहया, अमृत ते मीठे जाके बचना, मन ब्रह्मादक रुद्रादक, काल का काल निरंजन जचना, गुर प्रसाद पाइगे परमार्थ, तत्संगत स्थिति मन खजना, किया खेल बड़ मेल तमाशा, वाहगुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद, आज कोय न जाने, शिव ब्रंतर ध्यान, नितेज से वेद बखाने, निरंकार निर्वैर, अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गण समत, तरन तारन प्रसोई, नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथरा रसना रस है, श्री सत नाम करता पुरख, गुर रामदास चित्ते बसे, गुरु समरथ गय करिया त्रोव, बुद्ध सुमत सुमारन कहो, हुन त्रम तुजा फैरंत सदा, अग पुंज तरंग निवारण कहो, मथरा जन जान कही जी साच, तो और कछु ना विचारन कहो, हर ना भूत बड़ो कल मैं, अवसागर पार उतारन कहो, संत की सत संगत संग।

आग पले उनके मन इच्छित ही फल पावत है। रब के सुद को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगट दिने आगर। गैर गंभीर अथा अत बड़ सुबर सदा सभ्यद हृत नागर। संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर। कल जुग दुर्त दूर कर बे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जाको मन ध्यान तरे फिरत सगल जोग कवक को पावे आत्म प्रगास कहो। वेद बाणी सहित बिरंजस गावे जाको शिव मन गए न तजात कबलास कहो। जाको योगी जति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा जूट पेख किए फिरत उदास कहो। सो तिन स गुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई। गुर रामदास को नाम निधान ध्यान अंतर गात तेज पुंज ते लोक प्रगास। देखत दर्श पटक परम भजत दुख परहर सुख सहज बेगास। सेवक सिख सदा अत लुभत आल समूह जो कुसुम सुबासे। वैद्यमान गुर आप थप्यो थेर ताचो तख्त गुरु रामदास। तारो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो सुमरथ। हुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिदर सिद्ध न छोडे सत। दान बडो अतवंत महाबल सेवक दास कहो यो तथ। ताहे का प्रवाह काहू की जाके बसीस तरयो गुरहत। तीन पवन पर पूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई। अपन आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो। पायो नी अंत सुरे असुरे नर गण गंधर्व खो जंत फेरे। अविनाशी अचल अजो नी संभव पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। सदगुरु नानक भगत करी एक मान तन मन तन गोविंद दियो। अंगद अनंत मूर्त निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हीयो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो कर त्यायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। नारद त्रू प्रहलाद सुदामा पुपुत हर के जोगण। अम्बरीक जय देवतर लोचन नामा अवर कबीर पण। तिनको अवतार पयो कल पिंतर जगतर परछायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय घर परम पद पायो। मनसा का स्मरण तुझे नार काम क्रोध मिट्यो जो तिण। वाचा का स्मरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण। कर्म कर तो दर्स परस पारस सार बल पड़ जस गायो। श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तय हर परम पद पायो। जे सदगुर सिमरंत नैन के तिमर मिटे खेन। जे सदगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन। जे सदगुर सिमरंत जी की तप्त मिटावे। जे सदगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावे। तोई रामदास गुर बल पान मिल संगत तन तन करो। जे सदगुर लग प्रा पाई है तो सदगुर सिमरो नरो। जिन शब्द कुमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास। ताते गौर ज्ञान प्रट पुजियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास। कल कीर्त जो संत चरण मुड़ लग है तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास। ये अंगद अंग संग नानक गुर तेव गुर अमरदास कह गुरु रामदास। जिन सदगुर सेव पदार्थ पायो निज बस्त्र घर चरण निवास। ताते संगत सगन पाए पौ मान तुम मलियागर प्रगट सुवास। रूप प्रहलाद कबीर तलोचन नाम लय उपजो जो परगास। जे पिकत अत होय रहस्यमान तोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानेओ इन्नी भगत प्रेम लिवलाई। ताते अंग अंग संग पयो सायर तेन शब्द सुरत की नीव
ਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਥੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪਏ ਫੂਲੇ, ਸੁਧ ਧਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਏਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਏਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾੜ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ। ਮੋਹ ਮਲਬ ਵਸ ਕੀਓ, ਕਾਮ ਗਏ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਲੋਭ ਅਮਾਨ ਸਿਉ ਚਾੜਿਓ। ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋੜ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋ ਮੰਨੈ। ਪਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ, ਸਿਰ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸਿਰ ਆਦ ਪਤ ਸਚੋ ਤਖਤ, ਜੋਗ ਪੁਗ ਸੰਜੁਤ ਬਲ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਜ ਸਲ ਪਾਣ, ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗਦਲ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਹੁ ਜੁਗੀ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਰ ਨਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਖ ਸੇਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦ, ਕਲਾ ਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਓਲੋ ਹੈ। ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਉਦਰਣ, ਜਰਾ ਜੰਮੇ ਆਰੋ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸਿਰ ਥਪਿਓ, ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ। ਅਗ ਅੰਤਕ ਬਦੇ ਨਾ ਸਲ ਕਬ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਿਮਰੰਗ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਅਬਨਾਸੀ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਬਲ ਧਾਰੰ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੰ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਆਸਾ। ਤੇ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੁਜਸ ਵਖਾਣਿਓ। ਭਗਤ ਜੋਗ ਕਉ ਜੈ ਤਵਾਰ, ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇਓ। ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਕਾਸਿਓ, ਹਾਰ ਰਸਨ ਬਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਲਾਗ, ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ। ਬੜਭਾਗੀ ਉਨ ਮਾਨਿਓ, ਰਿਧ ਸਬਦ ਬਸਾਇਓ। ਮਨ ਮਾਨਕ ਸੰਤੋਖਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਨਪਉ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਜਨਕ ਰਾਜ ਵਰਤਾਇ, ਸਤਿਯੁਗ ਆਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਅਬ ਤੀਜ ਪਤੀਣਾ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਚ ਨੀਵ ਸਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਲੀਣਾ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ, ਅਪਰੰਪਰ ਬੀਣਾ। ਖੇਲ ਗੂੜੋ ਕੀਓ, ਹਰਾਏ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਓ। ਬੇਮਲ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਣੋ, ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵਿਓ। ਸੁਜਸ ਕਲ ਕਵੀਨ ਵਿਖਾਣਿਓ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਵਰਿਓ। ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਨਿਧਾਨ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਵਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਸਤ ਜੀਵਨ ਅਰਜਨ ਅਮੋਲ। ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਵ, ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰ। ਅਪਾਰ ਅਨੰਭਉ ਅਗੇ ਗੈਣ, ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੈਣ। ਸੀਤਲ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਅਸੰਭਉ ਉਦਵਯੋ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਧਾਤੋ। ਨਾਨਕ ਆਦ ਅੰਗਦ ਅਮਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾ ਜਗ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਭਾਗ ਜੁਗਤ ਸਿਵ ਰਹਿਤਾ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਓ ਬੜਭਾਗੀ, ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਮੇਦਨ ਪਰਸੇਤਾ। ਭਏ ਭੰਜਨ ਪਰ ਪੀਰ ਨਿਵਾਰਨ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤੁਝ ਜਸ ਭਗਤਾ। ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਨ, ਧਰਮ ਤੁਝਾ ਅਰਜਨ ਘਰ ਭਗਤਾ। ਧਰਮ ਧੀਰ ਗੁਰਮਤ ਗੰਭੀਰ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ। ਸਬਦ ਸਾਰ ਹਰ ਸਮ ਉਦਾਰ, ਅਹਮੇਵ ਨਿਵਾਰਨ। ਮਹਾਂਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਮਨ ਚਾਉ ਨਾ ਹੁਟੈ। ਸਤਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਮੰਤਰ, ਨਮ੍ਰਿਤ ਨਾਨ ਖੁਟੈ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤਨ ਸਰਬਮੈ, ਤੈ ਚਿੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਰਾਜੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਿਓ। ਭੈ ਨਿਰਪੋ ਮਾਣਿਓ, ਲਾਖ ਮੈਂ ਅਲੱਖ ਲਖਾਇਓ। ਅਗਮੈ ਅਗੋਚਰ ਗਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਚਾਇਓ। ਗੁਰ ਪਰਚੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਰਾਜਮੈ ਜੋਗ ਕਮਾਇਓ। ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ, ਅਪਾਰ ਸਰ ਸੁਬਰ ਫਰਾਇਓ। ਗੁਰ ਗੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਜਰ ਜਰਿਓ, ਸਰ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਇਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕਲ ਉਚਰੈ, ਤੈ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਨਿਜ ਪਾਇਓ। ਅਮਿਓ ਰਸਨਾ ਬਦਨ ਬਰਦਾਤ,
अलख अपार पुरसूर शब्द होमे निवार्यो पंचारण दलयो सुन सहज निज कर सहार्यो हर नाम लाग जग उधरयो सब गुरदे बसायो गुर अर्जन कल उच्चरै तै जन के कलश दी पायो सोरठ गुर अर्जन पुरख प्रमाण पारथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवार्यो पवजल सायर सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संघेत नाम लाग जग उधरयो जगते उदाहरण नाम सब गुरु तुठे पायो अब नहाय अबर सर काम बारंतर पूरी पड़ी ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तादे अंगद पयो तत से तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सदगुर थिर कियो अमर दास अमृत छतर गुर राम है दियो गुर राम दास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैण मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो नैन सत रूप सत नाम ससंतोख तरयो ओर आद पुरख प्रतख लिखो अशर मस्तक तोर प्रट जोत जगमग तेज भूमंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो पान मथुरा मूल सदा थेर लाए चित सनमुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सग सिट लग बेतरो तेजन जाचो जगतर पर जानियत बस रैन बास जा कोहित नाम स्यो परम अतीत परमेश्वर के रंग रंगयो बस ना ते बार पाए देखियत ताम स्यो अपर परंपर पुरुषो प्रेम लाग गयो बे भगवंत रस नाही औरे काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्प में अर्जुन गोर भगत के हेत पाए रहो मिले राम स्यो अंत न पावत देव सबे मोन इंद्र महासव योग करी हुन वेद बेरंच विचार रहे हो हर जापन छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे करी जग और न जाए महात्म में अवतार उजागर आन कियो तिनके दुख कोट के दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पियो ए पद ते मद चू कह रे मन भेद बपेद न जान पियो पर तचर दे गुर अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो जब लो नहीं पागल लार उदय

तार जहे मसरा जग तारन को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो काल समुद्र पय रूप प्रट हर नाम उदाहरण बसे संत जिस दे दुख दर्द निवारण निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई मान भजन जानियो पयो ते संसार सोई तारण गागन नव खंड मै जो स्वरूपी रहो पर पान मसरा कछ पेद रही गुर अर्जन प्रतख हर अजय गंग जल अटल शिव संगत सब नहावे नित पुराण बांचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर ढुल नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर शतर आप परमेश्वर दियो मेरे नानक अंगद अमर गुर गुर रामदास हर पै गयो हर वंश जगत जस संचरयो तो कवन कहे श्री गुरु मोयो देवपुरी मैं गयो आप।

का तान फिटक फिटका कोड़ बदियां सदा सदा अभमान पाए एते जाहे वीसर नानका एक नाम सा बुद्धि जाली है एक रह तत् ज्ञान माथे जो तुर लिखया सो मेट न सके कोए नानक जो लिखया सो वर्तदा सो बूझे जिसनु नजर होए जिन्नी नाम सारिया कूड़े लालच लग तंदा माया मोहनी अंतर तसना अग जिन्ना वेल ना तुंबड़ी माया ठगे ठग मनमुख बन चलाई है ना मिली वग साग आप उलाए पुलिये आपे मेल मिलाए नानक गुरमुख छुटी है जे चले सदगुर पाए साला की सालाना ही सच्चा साला है नानक सच्चा एक दर बीबा पर हर आग नानक जय जय मैं फिरो तह ते सच्चा सोए जय देखा ते एक है गुरमुख प्रगट होए दुख विसारण शब्द है जे मन मसाए कोए गुर कृपा ते मन वसे कर्म प्राप्त होए नानक हो करते खप मुए खून लखे संख सदगुर मिले सो उबरे साचे शब्द अलंक जिन्ना सदगुर एक मन सेवया तीन जन लागो पाए गुर शब्दी हर मन वसे माया की पुख जाए सेजन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए नानक होर पतसाइया कूड़िया नाम रते पातशाह जो पुरखे घर भगती नार है अत लोचे भगती पाए और सालने सवार दी खटस मीठे पाए त्यो बाणी भगत सलाह दे हर नामे चित लाए मन तन तन आगे रखया सिर वेचया गुर आगे जाए पै भगती भगत बलोच दे प्रलोचा पूर मिलाए हर प्रावे प्रभाव है चित खादे तिवताए सतगुर के भाणे जो चले तिवता से हर गुण गाए तन तन कल जुग नानका जे चले सतगुर पाए सतगुरु ना सेवयो शब्द ना रखियो उर तार तिग तिना का जीवया कित आए संसार गुरमति पौ मन पवे ता हरस लगे प्यार नाव मिले तुर लिखया जन नानक पार उतार माया मोह जग परमिया कर मुसे खबर न होए काम क्रोध में घिर लया मन मुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन प्रगासया मन तन निर्मल हो।

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गलिया ए पाए।

गुरमुख हसै गुरमुख रोवै, जे गुरमुख करे साई भगत होवै, गुरमुख होवै सो करे विचार, गुरमुख नानक पावे पार, जिन्ना अंदर नाम निधान है गुरबाणी विचार, तिनके मुख सद उजले तित सच्चे दरबार, तिन बहिंदिया उड़दिया कदे ना विसरै,

वे बंगली पौन असले की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आहे बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राघवै गावै पांचो संग बरा।

दूर। कथ न कथि न आवै तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो, साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार।